नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 12 अक्टूबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं, समाचार कुछ ही पलों में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक

0: मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, जो समय की बचत करते हैं वास्तविकता में वो धन की बचत करते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर ही होता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 339वीं कड़ी। छह 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 12। आमंत्रित कलाकार गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका है ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8 से सुनिए समाचार प्रभात, 8:15 से त्रिवेणी और 8:30 से नए जमाने के फिल्मी गीत सुनिए चित्रलोक में। सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गीतकार निदा फाजली पर। 10 से सुनिए पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत की चौथी कड़ी सुन सकते हैं। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और कार्यक्रम सुरीला सफर, दोपहर 1 से 2 से सुनिए त्रिवेणी। दोपहर 2:15 से दोपहर समाचार और 2:30 से सुनिए सदाबहार नकमे। सखियों का इंतजार होगा खत्म 3 से, कार्यक्रम सखी सहेली के साथ। शाम 4 से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, आज सुनिए डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत। 5 से छाया गीत का पुनः प्रसारण, तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से, 6 से हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35

रात 8:15 से नए जमाने के गीत सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के साथ, 8:45 से समाचार संध्या और रात 9 से कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गजल गायक जगजीत सिंह पर। 10 से सुनिए छाया गीत। रात 10:30 से ढलती जाए रात और 11 से रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

था आज का मुख्य कार्यक्रम। आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनीली धड़कन। सुनिए श्री रामचरित मानस आज 339वीं कड़ी।

श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। श्री राम के वाणों ने सर्प के समान उड़ते हुए रावण के सारथी और उसके रथ के घोड़ों का संहार कर दिया है। वो शीघ्र दूसरे रथ पर जा चढ़ा और उसने अपने अस्त्रों से श्री राम के रथ में जुटे घोड़ों का हनन कर दिया। क्रुद्ध होकर श्री राम ने उसके दसों सिरों में 10-10 वाण मारे। रक्त की धाराएं बह चली। वो दौड़कर उनकी ओर बढ़ा। श्री राम के वाणों से उसके सिर और 20 भुजाएं कट कट कर गिरने लगी, किंतु कटने के बाद उसके सिर फिर उगाते हैं, भुजाएं यथावत हो जाती हैं। ये क्रम टूटता नहीं। सारा आकाश रावण के कटे सिरों और भुजाओं से पट गया है, किंतु वो पूर्ववत वाण संधान करता जा रहा है। अपने वाणों से उसने श्री राम के रथ को इस प्रकार ढक दिया है कि वो दिखाई नहीं देता। आसमान में छाए रावण के सिरों से निरंतर चुनौती भरा उद्घोष हो रहा है। कहां है वानर राज सुग्रीव, लक्ष्मण कहां है और कहां है स्वयं राम।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं श्रृंखला की 12वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा कालखंड के हिसाब से आज भक्ति भाव में हम सबको अवगाहन करवा रहे हैं। तो शेखर दादा बताइए हमें कि अब किस इरा में हम पहुंच रहे हैं, किस कालखंड में पहुंच रहे हैं और कौन से वो गायक हैं जिनको आज की इस कड़ी में शामिल करेंगे।
2: हमारे जो अगले गायक हैं वो भी एक बहुत ही मधुर परिवर्तन के रूप में आए थे। बहुत अनूठी आवाज थी, बहुत स्पष्ट उच्चारण और सुरों में एक अद्भुत पवित्रता थी। 1973 से उनका गायन शुरू हुआ था
1: जी।
2: और धीरे धीरे वो गाना जो था उनकी सरलता और गाने में एक अजीब सा जो फक्कड़ी अंदाज, जो फकीराना अंदाज कहते
1: जी,
2: हैं
1: जी, जी।
2: वो था और भक्ति संगीत को उन्होंने एक बार पुनः लोकप्रिय बना दिया
1: जी जी।
2: और उनका नाम था पंडित हरिओम शरण जी का
1: जी।
2: उनके सारे ही भजन इतने लोकप्रिय हुए कि हर एक रिकॉर्ड कंपनी, उसमें तो दो तीन ही होती थी, HMV और म्यूजिक इंडिया और उस तरह की, लेकिन उन सबको भजनों की एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी। और मैं चाहता हूं कि उनका एक प्रसिद्ध भजन हम लोग सुने, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।

0: हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना हमने सुनवाई। और सच बात है शेखर दादा कि आजकल जैसे गाने हिट होते हैं वैसे ही एक जमाने में ये भजन हिट हुआ करते थे। अब बताइए हमें कि अब अगली रचना कौन
1: मैं
0: सी।
1: चाह रहा हूं कि अगली रचना सुनाने के पहले
0: जी
1: मैं आपका ध्यान इस बात पे लाऊं कि हमारे यहाँ केवल शायद हमारी ही संस्कृति ऐसी है,
0: जी
1: भारतीय या सनातन संस्कृति ऐसी है कि यहाँ कई बार भक्त की भक्ति जो है वो ईश्वर से बड़ी हो जाती है,
0: जी
1: इतनी बड़ी हो जाती है कि भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं।
0: जी जी
1: जब भगवान राम पर संकट आता है और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरते हैं तो वो हनुमान से जाकर के कहते हैं कि भैया तुम किसी भी तरह से मेरे भाई के प्राण बचाओ,
0: जी जी बिल्कुल
1: या वो केवट के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नैया पार लगाओ। और ये भक्ति की शक्ति ही है कि अर्जुन भी जब महाभारत में युद्ध करने जा रहे हैं तो स्वयं श्री कृष्ण आकर के उनके सारथी बन जाते हैं।
0: जी जी
1: और इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा भक्ति का या भक्ति की दिव्यता का कि आज भगवान राम के भक्त हनुमान है ये तो हम सब जानते हैं, पर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है भगवान

0: राम के मंदिर से।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सही बात
0: ये
1: आपने की।
0: हमारे यहाँ बड़ी अद्भुत बात है। और मैं चाहता हूँ, मेरा एक बड़ा प्रिय भजन है और मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय अनूप जलोटा जी, उनका एक प्रसिद्ध भजन है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, रामचरितमानस में ही केवल ये प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण में केवट का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जिस तरह से गोस्वामी जी ने केवट का प्रसंग मानस में जोड़ा है, और वो इतना हम सब का प्रिय प्रसंग है कि जब जब भी वो प्रसंग आता है या अनूप भाई के स्वरों में हम सुनते हैं, तो पता नहीं कैसे हमारी आंखों की कोर में वो छोटे छोटे आंसू के कण जो हैं वो आकर जमा हो जाते हैं।
1: जी
0: मैं चाहता हूँ, राग तोड़ी में ये रचना निबद्ध है, हमारे सभी संगीत सरिता के सुधी श्रोता इसका आनंद लें। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम

शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: जैनिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में उस्ताद फिल्म के इस गीत में संगीत ओपी नैयर का।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
3: मियां हलाहल मद भरे

रानी रूपमती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, एसएन त्रिपाठी का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: मन्ना डे की आवाज में साक्षी गोपाल फिल्म का गीत आपने सुना, भरत व्यास के बोल, चित्रगुप्त का संकेत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।

0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
2: आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में आप सुन सकते हैं इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत। और विविध भारती पर इस समय आप कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुन रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि रोजाना इन दिनों आप सुन रहे हैं 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज 12वीं कड़ी आपने सुनी, इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। और इस कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री गायक संगीतकार शेखर सेन। कार्यक्रम विविध भारती पर भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं। कार्यक्रम में बने रहिए।

भोसले और साथियों की आवाज में दीपक के बोल, सन्मुख बाबू का संगीत, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा असद भोपाली ने, ए आर कुरैशी का संगीत, फिल्म सिम सिम मरगिना।

0: शमशाद बेगम की आवाज में कैदी फिल्म से गीत आपने सुना। जानिसर अख्तर ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आप सुनते हैं मिलकर आशा भोसले की आवाज में तलाक फिल्म से एक गीत, जिसे लिखा है कवि प्रदीप ने, सी रामचंद्र का संगीत।
1: लगी जो टक्कर, अरे खा गए चक्कर।

तलाक फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, कवि प्रदीप की बोल श्री रामचंद्र का संगीत, और इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: विवाद और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हिराही प्यार के। और अंतराल पे जाने से पहले हमने आपको सुनवाया दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आंधी फिल्म के इस गीत को गुलजार ने लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: चलिए बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
5: मुझे दर्द रहता है दिल में दर्द रहता है।
6: अच्छा।
5: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
6: बाप रे।
5: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन समाचार थोड़ी ही देर में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
3: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
4: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे

0: 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
0: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
0: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन दांत खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
5: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा

0: कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडब्रू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123314 8101 23717 1717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। YouTube पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस और

यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत और भारत ने तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। एक समय की बात है, एक राजा युद्ध में हार गया और उसके सभी सैनिक मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए वो गहरी गुफा में छिप गया। शत्रु सैनिकों ने गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया। राजा अब गुफा के अंदर फंसा हुआ था, भूखा प्यासा और पूरी तरह से निराश। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि बेटा, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बात याद आते ही राजा में नई ऊर्जा आ गई और उन्होंने गुफा से बाहर निकलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर से सेना संगठित कर शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस भी पा लिया। दोस्तों, यानी परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसी समय आप वास्तव में हार जाते हैं। जब तक आदमी खुद से नहीं हार जाता, उसकी हार नहीं होती। हाँ, यानी अगर आप खुद से नहीं हारे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको चाहकर भी नहीं हरा सकती। अब देखिए ना, APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, हार का मतलब सीखने का पहला प्रयास है। इसलिए असफल होने पर कभी हार नहीं माने। उनका ये भी कहना था कि पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि दूसरी हार किस्मत के भरोसे की बात कही जा सकती है। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें।

निराश होने का मतलब है ये महसूस करना कि आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे। हमारे अंदर वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। खुद पर भरोसा रखिए और रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हर काम आसान है, बस अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, यही मायने भी रखता है। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधी मंजिल हासिल कर लेंगे ये सोचकर। अगर हम शहीद भगत सिंह की बात करें तो उनके लिए हार मान जाने का मतलब अपने सिद्धांतों और देश के प्रति निष्ठा से समझौता करना था। भगत सिंह हार मानने या घुटने टेकने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी को मौत के फंदे पर भी सिर ऊंचा रखना चाहिए। उनके लिए हारना आत्मसमर्पण था। हालांकि हर नाकामी आपको सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। जब सब कुछ कठिन लगने लगे तब भी डटे रहना ही सफलता की कुंजी है। हार न मानने वाले ही अंत में सफलता पाते हैं और ये हम सभी जानते हैं।

दोस्तों, व्यक्ति को कभी अपनी जीत हो या हार, उसे लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। व्यक्ति को जीतने से पहले न तो जीत और न ही हारने से पहले कभी हार माननी चाहिए। देखिए ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी हार का सामना करता है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हार किसी अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि ये उस मोड़ का उदाहरण है जहाँ से नई शुरुआत संभव होती है। जीत के क्षणों में हम खुश हो जाते हैं, पर हार के क्षणों में हम परिपक्व होते हैं। हाँ, याद रखिए, हार के क्षणों में हम परिपक्व हो जाते हैं, और यही परिपक्वता भविष्य में हमारी विजय की असली वजह बनती है। याद रहे श्रोताओं कि आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जिस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे, वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हार मानना जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान के भीतर असीम क्षमताएं हैं। उनका मूल मंत्र था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बी प्राक और साथियों की आवाज में योद्धा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा, तनिष्क बागची का संगीत। तिरंगा के तीन रंग हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं और इसे लहराता देख हमारा मन भी हिलोरे मानता है। ये प्रतीक है हमारी सभ्यता, संस्कृति और देशभक्ति का। वैसे देखें तो रंगों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व भी होता है। कल से नवरात्रि भी आरंभ हो चुकी है और माता दुर्गा के 9 रूपों को भी अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है।

0: थ्री स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमेधा करमहे और साथियों की आवाजें, अलौकिक राही और अमजद नदीम के बोल और अमजद नदीम का ही संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस

0: प्यार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं। संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आज हम बात कर रहे हैं रंगों की। अगर देखा जाए तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में महाराष्ट्र खासकर मुंबई में लोग एक से रंगों के कपड़े में नजर आते हैं। बकायदा इसके लिए सोशल मीडिया पर लिस्ट भी जारी होती है कि किस दिन कौन सा कलर पहना जाएगा और इस तरह से ऐसा लगता है कि जो पूरा शहर है वो कहीं ना कहीं एक ही तरह के रंग में रंग गया है। तो ये क्या अच्छा है कि सब एक ही रंगों में नजर आ रहे हैं और एक जैसे ही लगते हैं, या इसके भी कुछ अलग परिणाम हो सकते हैं, अलग विचार हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। पर पहले सुनते हैं ये गीत भाग मिल्खा भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बशीर के बोल, माफ कीजिएगा, श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म से गीत आप सुन रहे थे अमन त्रिखा, विनीत सिंह और साथियों की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ।

0: सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे हैं रंगों की। हालांकि जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है और रंगों का मनोविज्ञान तो ये भी कहता है कि आपका व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी लोग उन रंगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके व्यक्तित्व के अनुसार सही ढलते हैं। वैसे कई बार मूड के अनुसार भी हम रंगों का चुनाव करते हैं। कुछ लोग तो सप्ताह के 7 दिनों में भी अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं और मौसम को भी तो रंगों में तोला जाता है, जैसे कहा जाता है गुलाबी ठंड।

0: जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाजों में आप सुन रहे थे शुद्ध देसी रोमांस फिल्म का ये गीत, जयदीप साहनी ने इसे लिखा, सचिन जिगर का संगीत।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, जिसमें बात हम कर रहे हैं रंगों की। तो देखिए, रंगों को देखने का नजरिया भी ये दिखाता है कि हम किसी रंग को किस भाव के साथ देखते हैं। जब हम ICU के सामने लाल बत्ती जलती हुई देखते हैं तो हमारा दिल घबरा जाता है, वहीं हम किसी दुल्हन को लाल जोड़े में देखें तो हमारा मन खुश हो जाता है ना?

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और अंतराल में जाने से पहले बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजों में। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा, टोबी प्रतीक, शैल प्रतीश और संजीव सेन का संगीत था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: रांझणा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और साथियों की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे हैं रंगों की। तो वैसे तो रंगों को लेकर कई तरह की बातें पढ़ने सुनने मिलती हैं, लेकिन क्या वाकई किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व रंगों के प्रभाव से बदल सकता है? भाई, हमें लगता है कि इसमें रंगों का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम किसी रंग को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि कई बार उन रंगों से जुड़ी यादें, भावनाएं या वो बातें जो हमारे अवचेतन में बसी होती हैं, वो भी उन रंगों को लेकर हमारे नजरिए को प्रभावित करती है। वैसे ही जैसे कि किसी को लाल रंग पसंद होता है, किसी को नीला, किसी को हरा तो किसी को पीला, और उसके लिए वही रंग खुशी का प्रतीक बन जाता है। तो जैसे हम रंगों में ढल जाते हैं या रंग हम में ढल जाते हैं, बस उसी तरह से हम भी अलग अलग रंगों में ढल जाएं, बजाय ये सोचने के कि कौन सा रंग हमें पसंद है। और कभी कभी अलग अलग रंगों में ढलने का भी अपना ही एक अलग मजा होता है।

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में एजेंट विनोद फिल्म का गीत आपने सुना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे

बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

लुटेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जब वी मेट फिल्म से ये गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शायर और गीतकार निदा फाजली। कहते हैं निदा के चाहने वालों से निदा भले ही दूर चले गए हैं, लेकिन उनके ख्यालात, उनकी गजलें, उनके गीत हर वक्त उनके आसपास होने का एहसास दिलाते रहते हैं और एहसास दिलाते रहेंगे। निदा फाजली, इनका पूरा नाम था मुक्तदा हसन निदा, लेकिन इनकी शायरी और इनके गीतों ने इनको मशहूर किया निदा फाजली के नाम से।

मिट्टी से जुड़े शायर और गीतकार निदा फाजली की पैदाइश दिल्ली की है। पिता मुर्तुजा हसन और मां जमील फातिमा की तीसरी संतान मुक्तदा हसन यानी निदा फाजली की जन्म तारीख दिल्ली के कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में लिखवाई गई 12 अक्टूबर 1938। हालांकि

निदा फाजली को लिखने का शौक तो पहले से ही था, इसलिए इन्होंने अपना पेन नेम यानी तखल्लुस काफी पहले ही रख लिया था, फाजली। फाजिला ये कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहां से निदा के पुरखे माइग्रेट होकर दिल्ली में बस गए, इसीलिए निदा ने अपना तखल्लुस रख लिया फाजिली।

निदा फाजली शुरू से ही कबीर और सूरदास से प्रभावित रहे। गालिब की सहजता उन्हें बहुत मुतासिर करती थी और शायद इसीलिए उनकी खुद की शैली भी बहुत ही सरल और सहज भाषा वाली हो गई।

जैसा कि हमने पहले ही बताया कि निदा फाजली कबीर और सूरदास से प्रभावित थे, तो उन्होंने भी कुछ दोहे लिखे हैं। कुछ आपको सुनाते हैं। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पाओ, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गांव। मैं भी तू भी चलती रुकती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो करे मुझे करे बदनाम। और ये एक पांचवा और अंतिम दोहा आपको सुनाता हूं। वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सचमान।

पार्टीशन के बाद देश में होने वाले दंगों से निदा फाजली के माता पिता परेशान और दुखी हो गए और तब उन दोनों ने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला कर लिया। लेकिन निदा फाजली को उनका यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, सो वो तब की बंबई यानी आज की मुंबई में आकर रहने लगे। अब यहां बंबई में आने का और यहां रहने का मकसद एक ये भी था कि उस समय जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थीं, बड़े बड़े अखबार जो निकला करते थे, उनके लिए ये मुंबई एक बड़ा गढ़ माना जाता था और फिल्म नगरी यहां की पहचान शुरू से ही थी। तो यहां की तमाम पत्रिकाओं में निदा फाजली की रचनाएं धीरे धीरे धीरे छपने लगी और उनकी सरल शैली ने पाठकों के बीच निदा फाजली को लोकप्रिय कर दिया। अब निदा फाजली ने अपनी कलम के दायरे को बंबई में और दूर तक फैलाने की कोशिश की और नतीजा बहुत अच्छा निकला। कुछ ही दिनों में निदा फाजली को कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्ताना में गाने लिखने का मौका मिल गया। लेकिन फिल्म रजिया सुल्ताना के नायक धर्मेंद्र, जिन्होंने एक हबशी गुलाम की भूमिका अदा की थी, उन पर गाए दोनों गीत खूब जमे और लोकप्रिय भी हुए। विविध भारती के हमारे जो पुराने श्रोता हैं, शायद वो जानते ही होंगे कि कब्बन मिर्जा विविध भारती स्टाफ में ही थे। निदा फाजली के अपने सहज स्वभाव और सरल लेखन से सारे लोग मुतासर थे, प्रभावित थे, सभी का दिल निदा फाजली ने जीत लिया। कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित भी हुए और सन 2013 में भारत सरकार ने भी निदा फाजली को पद्मश्री से सम्मानित किया।

कलम के धनी, हिंदी और उर्दू दोनों पर समान अधिकार रखने वाले शायर और गीतकार निदा फाजली 8 फरवरी 2016 को इस संसार से विदा हो गई।

0: शायर और गीतकार निधा फाजली पर केंद्रित था आज का ये कार्यक्रम शोध आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है।

0: तो पागल है
1: दुश्मन,
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: गदर एक प्रेम कथा।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
1: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
1: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। उत्तम जी नमस्कार। एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी। नमस्कार जी। आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
1: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी।
1: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
5: ये भी तो एक हिस्ट्री है।
1: ये भी एक हिस्ट्री है क्योंकि यहां से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
5: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
1: जी हाँ।
5: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं, साईं बाबा साईंनाथ बोलो, साईं बाबा बोलो, एक एक साईंनाथ तेरे हजारों, ये दोनों गाने जगदीश खन्ना के।
1: ओ हो,
5: नाम नहीं है।
1: नाम नहीं है।

0: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
1: जी जी,
0: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
1: अरे क्या बात है,
0: क्योंकि जगदीश आया था, मेरे पास दो गाने अरेंज करने हैं, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं, दो गाने मुझे अरेंज में, तो जैसे दूसरे में जट रहे थे तो ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज किए, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली, क्रांति के बाद ही वांटेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म
1: जी,
0: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिक लेंगे, तो म्यूजिक कौन, जगदीश।
1: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
0: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
1: ओ
0: म्यूजिक टीचर थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, जैसे और गाने बना लिए
1: जी,
0: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
1: मनोज जी ने कहा।
0: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे, तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो, मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह,
1: अच्छा
0: म्यूजिक एक्टर, मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई, मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम, क्यों, मैंने कहा नहीं मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का, अच्छा ले लो, तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा, तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, हर चौथे दिन जगदीश आ जाए और उससे बुला रहे हैं, मैंने कहा यार तुम देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है, महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश, तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो डैडी के पास बैठा मैं, मैंने कहा डैडी ऐसी ऐसी ऑफर आई है, क्या ऑफर है, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
1: मनोज जी का बैनर VIP,
0: राज कपूर VIP, मतलब
1: जी
0: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
1: जी,
0: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं,

0: तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं, लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं। जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैंने ये बात मनोज में कहा, मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही। तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैंने कहा नहीं, आप बताइए। मतलब देखो, म्यूजिक एक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है, जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं वहां से तुम शुरू कर रहे हो।
1: जी,
0: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
1: वाह,
0: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक एक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी बोली नहीं। बोले कभी मौका ही नहीं आया।
1: अरे
0: आप
1: गजब।
0: तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक एक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलता नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक एक्टर बनो,
1: ये पिताजी की बात है।
0: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ, हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद।
1: जी,
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ पिंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है, हाँ
1: हाँ
0: वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है राधा
1: हाँ
0: जी का और महेंद्र कपूर का।
1: हाँ
0: उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
1: ओहो,
0: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ। लता जी, महेंद्र जी चले गए और हम लोग का रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख ले नाम उसका,

0: इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: तलक शम्मा जली, ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
2: तो हमने पेंडर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
2: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
2: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनु साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
2: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
2: और उसको
0: गाने की शक्ल
2: गीत में ना गाना देना। कब तलक शम्मा जली।

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है, हाँ, है
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी,
0: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करें ना, तुम
1: कुछ हटेगा ही,
0: लाजवाब शेर है
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते।
1: और अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल थी।
1: कपूर,
0: फिर देखिए फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है। विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना,
1: क्या बात है,
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
1: जी जी जी,
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो।

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना। बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक शम्मा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मिजर्टर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मिजर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मिजर्टर है, ऐसा गाना नए मिजर्टर, मिजर्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है तो 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली
0: छाती, जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना वाह वाह वाह क्या बात है। क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगदीश बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: देखिए इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाएं।
1: जरूर, बिल्कुल सुनते हैं।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी,
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चंद परदेसी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज,
0: जी,
1: चंद परदेसी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: तो उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की,
1: पूरी पंजाबी, हाँ,
0: स्मिता पाटिल और राजबब्बर,
1: राजबब्बर की फिल्म थी वो, उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था,
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस,
0: ये बताइए।
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
0: जी, लता दीदी,
1: कल, हाँ, कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था, बस
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी।
1: फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
0: जी,
1: ताकि आदमी लेके, उन्होंने फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे, हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
0: अच्छा अच्छा,
1: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
0: अब मेल वॉइस रह गई है,
1: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाएं, उसको गवाएं, उसको गवाएं, उसको गवाएं, नहीं यार, ये सब आवाजें जो हैं ये सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
0: फीमेल पार्ट है आपके पास,
1: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए, मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है, कड़क, दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार, सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाएगा,
0: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
1: कैमरामैन थे
0: और गायकी शौकिया थी,
1: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का भी गाना गाया था।

0: गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ, रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है,
0: वो आज भी हिस्ट्री है गाना।
1: और ये गाना बड़ा हिट है,
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है गाना
1: जी।
0: सुना जाए इसको
1: जरूर। आप थोड़ा गाएंगे?

से है खुशी, तेरे गम से है गम। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था हुस्न की वादियों में की प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना
1: जी,
0: था
1: जी, जी।
0: बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तू याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी।
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत से
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और बारिश हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी।
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी, जी।
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी। अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है और
1: दिल तो पागल से शुरू होती है।
0: जी, दिल तो पागल है से। तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी जी।
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
0: जी,
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है, लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी।
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजिली बन जाएंगे।
0: जी,
1: लेकिन मैं आपको सच मत बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड आल्सो एंड दिस साइड आल्सो।
0: जी, दोनों काम अब आपको खुद ही।
1: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बड़ा मजा आया काम करने में। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही।
0: हाँ।
1: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है।
0: जी,
1: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
0: गजब।
1: तो मनोज जी ने मुझे बोला, उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया और घर आते ही वो शुरू हो गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, घर आते ही मैंने

0: बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
1: क्लर्क क्यों, तुमसे जो बात हुई,
0: तुमसे जो बात,
1: ये जरूर ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना
0: जी।

0: तुम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशियन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो
0: जी,
1: वसंत देसाई हो या चित्रगुप्त जी हो या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा एज ए अरेंजर, काम बढ़ता चले गया
0: जी।
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं
0: जी।
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने, और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं, और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर ली है तो ये तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा।
1: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी
0: जी।
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा
0: जी।
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चले नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ,
1: काम में कन्वर्ट नहीं हुआ। और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे
0: जी।
1: पेंटर बाबू को जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में, बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आर डी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तुमने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
0: कायम रहेगी,
1: मेरे साथ कायम रहेगी, और संगीतकार तो आना जाना है।

0: आएंगे कभी जाएंगे।
1: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है
0: जी। इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको
1: जी।
0: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है
1: जी
0: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है
1: जी। जी
0: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
1: बिल्कुल,
0: एक चाय वाला करोड़ोपति बन गया, एक भेल वाला अरबोपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली। तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है
1: जी।
0: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का
1: जी,
0: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया। तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी
1: जी।
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहाँ तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो वायलिन दे दी,
0: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है
1: जी।
0: अभी गाड़ी को कहाँ तक ले जाता है। तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज इस स्टेज पे पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है,
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए
1: जी।
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।

0: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी, उन्हें वो
0: कहानी सुनना
1: चाहिए। बात की बात है, क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था
0: जी।
1: तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके
0: जी,
1: कवन मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टार कास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी वो। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं राइटर कवर जलालाबादी राइटर थे वो बैठे हुए हम लोग, तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की। तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
0: अरे अरे अरे,
1: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग वहीं छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
0: अरे बाप रे,
1: और वहीं खत्म हो गए,
0: हार्ट अटैक आया।
1: हार्ट अटैक आया। और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे तो बड़ी खुशी थी, वो फिल्म बंद हो गई
0: जी,
1: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा जी ठीक है करते हैं। तो मैं घर गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
0: यस यस बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
0: जी,
1: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
0: जी,
1: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है, तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
0: जी।
1: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा। तो जगदीश का, मगर जगदीश के पहले दो गाने हो गए।

0: ये आपने बनाया? मैंने कहा 3 4 5 6 7 8 12 गाने रिकॉर्ड किए हमने
1: जी, उसमें से 2 जगदीश जी के थे,
0: डेढ़ जगदीश का
1: डेढ़ थे जी हाँ।
0: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
1: जी,
0: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया उत्तम, ये लिख लिया हो गया, नारायण अग्रवाल का एक गाना है
1: जी, जी।
0: तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, गाती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ये मेरा है, और वो गाना वो एल्बम हिट होगी बहुत
1: जी जी,
0: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का 4th भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: उजाले उनकी या

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलो।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

संभाले जलते तवे पर, झुलस गया पानी।

हम सुन रहे थे ये नगमा चंदन दास की आवाज़ में, और इसे चंदन दास ने ही संगीतबद्ध किया, निदा फाजली के बोल।

0: हम सुन रहे थे सजदा एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया जगजीत सिंह ने और बोल लिखे निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व

0: संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे नगमे को, जिसे लिखा निदा फाजली ने और गाया जगजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
0: यह है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे महबूब एल्बम से तलत अजीज़ की आवाज़ में निदा फाजली के बोलों को, जिसे संगीतबद्ध किया है तलत अजीज़ ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है इजहार एल्बम से। सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने इसे गाया है, निदा फाजली ने इसे बोल दिए हैं और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत।

हम सुन रहे थे कतील शिफाई और मुमताज़ राशिद के द्वारा लिखे गए इस नगमे को, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जिसे पंकज उदास की आवाज़ में हम सुनने वाले हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।
3: तुझसे दूर

0: गीत एल्बम से शुभा मुद्गल की आवाज में, जिसके गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे शीशा एल्बम से यह नगमा जिसे मधुश्री ने गाया। गीतकार माया गोविंद और सीन ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: और कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: रंग तरंग
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय
7: CIET प्रस्तुत करता है
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए NCERT की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की

0: हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
3: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता।
1: हैं कई प्रदेश के
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
6: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
7: असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
8: बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
1: हम अनेक किंतु

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद

आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए छक्के।
2: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।

0: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वह एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैग टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: ऊंचाई पर
3: लोग साथियों, बिल्कुल ठीक। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे और धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक
4: रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है,
3: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
2: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें?
3: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
2: आजा मुकेश, आजा।
1: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
0: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।

शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।

0: और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
1: आगे बढ़ो,
0: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
2: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
4: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गईं।
2: कार्बाइन खाली हो गई है।
5: क्या करूंगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो।
2: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
4: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
2: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
4: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
2: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं भाग। अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। हमने साथियों, तुम्हें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
6: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
7: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
6: आपको वहाँ ले चलते हैं।
7: वहाँ चलते हैं।
6: मरहम पट्टी करवा लीजिए।
7: हाँ, कम से कम।

0: बहना रुक जाएगा।
1: आओ भाई जी, नहीं मानसे, नहीं मानसे।
2: आओ तो सही,
1: चिंता मत करो,
3: मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
0: लेकिन जी, लेकिन
3: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हुआ।
0: अरे
3: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
0: आप सुनो,
1: छुपा हुआ ना,
0: आप
1: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो। लेकिन चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं होगा मुझे।
0: लेकिन
1: अरे जाओ,
0: आप
4: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
3: संजय भाई, इधर आओ, क्या चखा था?
1: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
5: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
4: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
9: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: बात सेहत की हो या हुनर को तराश।

0: खूबसूरत है।
1: हम सुन रहे थे ये गीत नाखुदा फिल्म से। लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाजों में, गीतकार निदा फाजली और संगीतकार खयाम। आइए सुनते हैं अगला गीत सपने टू फिल्म से। संजीवनी भेलांडे की आवाज में अनुज कपूर ने इसे संगीतबद्ध किया और बोल हैं निदा फाजली के।

0: 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, हरजाई फिल्म से, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे ये गीत चाहत फिल्म से, कुमार सानू की आवाज में अनु मलिक के संगीत के साथ, जिसे बोल दिए निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दादा।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं एक और गीत निदा फाजली की कलम से निकला हुआ, जिसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने, जगजीत सिंह अलका याग्निक की आवाजों में, और फिल्म है तरकीब।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार। जीवन में कई बार कई बातें बड़ी जरूरी होती हैं और आज उन्हीं बातों में से एक जरूरी बात है कि हम आपको सुरीला सफर की इबारत सुना दें। इबारत कुछ ऐसी है, होश वाले नहीं थे जब, तब से माँ का सहारा रहा है। वही तो है एक अपनी, जिसके पास गुजारा रहा है। दिल ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ठिकाना रहा है। वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। नव रूप लेकर हर वर्ष आ जाती है वो, नित नए रूप लेकर हमें रिझाती है। लगता है मानने लगे हैं हम उसकी, माँ फिर चुपचाप चली जाती है। खैर, ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब हैं, कहीं धूप कहीं छांव मिलती है। तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है।

हम सुन रहे थे ये गीत सरफरोश फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। आइए बात करते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसकर हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ, बहुत दर्द दिया है जमाने ने मुझको, सब कुछ झेल कर सिखाती है माँ।

दोस्तों, किसी भी मुश्किल का किसी को हल नहीं मिलता। शायद घर से कोई अब माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ एक नाम या रिश्ता नहीं, पूरा संसार इस एक नाम में समाया है। जब पास होती है तो लगता है हमें किसी बात की चिंता नहीं, मेरे साथ हमेशा रहेंगी। हम उनसे रूठते हैं, मनाते हैं, जी भरकर बात नहीं कर पाते, लेकिन उनके जाने के बाद खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हमें बहुत मजबूत बनाकर चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आइए सुनते हैं इस माँ के नाम एक गीत।

दादीमा फिल्म के इस गीत को हम सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय।

ये सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सुरीला सफर। हमारे श्रोता बहुत सुंदर कमेंट करते हैं और वह लिखते हैं कि माँ वो है जिसके पास लौटकर आज भी मन बच्चा बन जाना चाहता है, जिसकी गोद में दुनिया की सारी थकान भूल जाते हैं और जिसकी आवाज सुनकर तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सच तो ये है कि माँ घर में हो तो घर सिर्फ घर नहीं सुकून बन जाता है, और आप मैं हम सभी सदा ही उसी सुकून की तलाश में रहते हैं, है ना? तो चलिए बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है और सुनिए ये गीत सुकून की तलाश में।

0: सही कहा आपने, बहुत सुंदर चित्रण है इस गीत में गर्मी सर्दी बरसात दिल की चाहतों का। और आप सभी ने सही पहचाना, भूपेंद्र गायक कलाकार भूपेंद्र हैं। गुलजार की कलम से निकला यह गीत है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म है मौसम। हम बात कर रहे हैं माँ की, कार्यक्रम सुरीला सफर में। लेकिन बात करते करते सुन लेते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर। आपने संदेश भेजे हैं बड़े सुंदर से। एक ने लिखा है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ नाम से ही खुशी का हर पल सा है। आज मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अगर कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे या दुख का पल हो तो बस माँ की याद आती है और खूब रो लेती हूँ, लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं उसे याद करके रो रही थी। ये तो जिसकी माँ है उसके हृदय की बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सर्वोच्च इबारत माँ शब्द, सारे शब्द इस शब्द के आगे फेल है, सब कुछ इसी शब्द में समा गया है। बिल्कुल सही। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ अपने आप में विश्व सी होती है, जिसमें हमारे हर प्रश्न का हल होता है। जिनके माँ होती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं होती वो जानते हैं। सही बात है। हमने हमारी इबारत में भी लिखा है कि दिल फुर ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ही ठिकाना रहा है, वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत जिसे लिया हमने अदालत फिल्म से। बड़ी खूबसूरत सी गीत को हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और आप सबने सही पहचाना संगीतकार मदन मोहन। हम बात कर रहे हैं माँ की, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान कितना भी अरबपति खरबपति अमीर हो जाए, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन इसे संसार में वो एक चीज़ नहीं खरीद सकता, वो है माँ और पिता। इंसान कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे

एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ वह पहला नाम है जो बचपन से लेकर जीवन की हर दहलीज तक उनका प्यार हमें संभल देता है। माँ जिसकी गोद में हर उम्र में सुकून मिलता है। और नवरात्र में जब माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते हैं तो एहसास होता है कि माँ केवल ममता की मूर्त ही नहीं बल्कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर हमारे दिलों में हुआ है और पूरी भक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ हवन की सुगंध पूरी फिजाओं में तैर रही है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि हर माँ सोते हुए अपने नन्हे शिशु पर लगातार नजर रखती है और उसे जान से बढ़कर प्यार करती है। आगे चलकर इसी तरह से त्रैलोक की जननी आदि शक्ति माता रानी से भी अनुभूति मिलती है। अज्ञान की नींद में समाये हम भक्तों को जगाती हैं और उनके सपनों को संजोए रखती हैं। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनते हुए आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से है और ये जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब कहाँ कैसे देखी थी। बताइएगा जरूर। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमने आप सबसे पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सबने बताया कि ये त्रिमूर्ति फिल्म का गीत है। किसी ने बताया कि उन्होंने करतारपुर में देखी, किसी ने बताया भोपाल में देखी, किसी ने कहा अभी तक नहीं देखी। सबकी अलग अलग बातें थी, तो सबकी अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। और एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी जो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि शहर आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बात तो बड़ी छूने वाली है और सच भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में निबंध में लिखते थे कि चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों के गांव में। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया कि माँ जहाँ होती है वहाँ सपनों का गांव बसता है, वहाँ सिर्फ प्यार दुलार होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक प्रश्न आप सबसे आ रहा है मन में जो पूछा जाए, प्रश्न ये है कि आपने अपनी माँ की किस ख्वाहिश को पूरा किया है।

हम सुन रहे थे ये गीत एबीसीडी 2 फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। मयूर पुरी ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप अपनी माँ की पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, परंतु उसके पहले हम ये संदेश पढ़ते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहते हैं भगवान सभी का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। हमारी एक और श्रोता बताते हैं कि उनकी माँ की अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका सत्कार जगन्नाथपुरी धाम में हो और उन्होंने यह कार्य किया, उसके लिए आपका आभार। अपनी माँ की हर बात को पूरा करना हम बच्चों का कर्तव्य होता है ना। तो हमारे एक और श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते, कहते हैं हमें लगता है कि हमने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि हमारी माँ जब भी हम कुछ करते थे तो कहती थी कि बस यही तुम्हें चाहती थी। सच बात है, माएँ ऐसी ही होती हैं, हम जो कह दें उन्हें लगता है कि बस वही सही है, और माँ इतना प्यार जो करती है। हमारी कोई श्रोता

सकते हैं कि द टाइम इज द बेस्ट हीलर बट नॉट इन केस ऑफ मदर. एज द टाइम पासिस आई मिस माई मदर मोर डे बाई डे. सच कहा आपने कि कहते हैं कि समय एक अच्छा हीलर होता है, लेकिन माँ के केस में नहीं होता. जब समय गुजरता है तो माँ को और याद करते हैं. हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सब रिश्ते पैसों के बने हुए हैं पर माँ के रिश्ते का कोई मोल नहीं है. हमारे एक श्रोता ने कथा लिखी कि हम छोटे थे, एक ही कंघी थी. जब माँ को बाल झाड़ना होता था तो उसे बहुत टाइम लगता था क्योंकि माँ के बाल बहुत बड़े थे. स्कूल जाते समय समय हो जाती थी और माँ को मुकेश जी भी पसंद थे, तो हमने बर्थडे पर सारे भाई बहनों ने पैसे इकट्ठा करके माँ को कंघी और मुकेश जी का कैसेट दिया था और माँ खुशी के मारे रोने लगी थी. क्या बढ़िया बात है. माँ बहुत सुंदर चीज है. हमारे श्रोता ने इसी बात को लिखा है और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरी बेटी अच्छा इंसान बने और मेरी तरह विद्यादान का काम करे, और उनकी यही ख्वाहिश थी और यह इच्छा मैंने पूरी की है. कितनी बढ़िया बात है कि आप सभी अपनी माओं की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और जिनके पास उनकी माँ है उन्हें तो यह कार्य अधिकार से करते रहना चाहिए. हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कहती थी जिंदगी में सफल हो ना हो लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, और उसी पर चलकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं. कितनी बढ़िया बात है. हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ जैसा दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, माँ ममता का सागर है. बिल्कुल सही बात है. और हमारे और सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं. हम ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत. ये बड़ा प्यारा सा गीत है और बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, ये आप बताइए और सुनिए ये गीत.

हम सुन रहे थे पिया का घर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल से सजा हुआ और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस संगीतबद्ध किया। हमारे बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ ने जिस तरह से हम लोगों को घर गृहस्थी में पाला है, उस समय कोई और होता तो पता नहीं कैसे करता, वैसा उन्होंने ही किया है। बिल्कुल सही बात है, माँ सब संभाल लेती है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ बहुत बीमार थी, इलाज कराना था, दिल्ली लेकर आए थे और सेवा किए, मुझे पुणे जाना पड़ा और सेवा नहीं कर पाए, रहता है मलाल दिल में, कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि माँ की कितनी महिमा है यह हर किसी को मालूम है, पर देखकर, समाचारों में पढ़कर, सुनकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में कुछ औलाद अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़िया गाना है, जीवन और जीवन की जीत पर लिखा है, संभवतः संगीतकार रविंद्र जैन है। नहीं, आप यहाँ पर त्रुटिवश है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है ना, बच्चे की हर बात, हर ख्वाहिश जान लेती है और ख्वाहिश को पूरा करती है। जी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ वैसे कई बार मेरे घर आई थी, लेकिन वो उनके घर आना चाहती थी और वो आ नहीं पाई और अचानक से चली गई, ये दुख उनके मन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि साधारणता अनेक बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में होती है, वो 9 भाई बहन है पर उन्होंने अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मम्मी बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी, उन्हें विविध भारती में स्वप्न चेहरे फूल से वाला गीत सुनना था, वो फरमाइश उन्होंने पूरी करवाई थी। ऐसे ही विविध भारती का साथ और आपका साथ बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि माँ की बात को सुनकर हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत। और ये जो अगला गीत है, आप अपने संदेश भेजते जाइए और साथ में बताइएगा कि ये जो अगला गीत है इसके गीतकार, संगीतकार और गायक। अब तीन उत्तर देने हैं, गीतकार, संगीतकार और गायक, तीनों के नाम बताने हैं। सुनिए ये गीत।

0: कभी छाँव।
1: हम सुन रहे थे ये गीत कभी धूप कभी छाँव। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत में गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों के नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इस गीत के गायक हैं कवि प्रदीप, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने। हमने हमारी इबारत में लिखा है कि ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब हैं, कहीं धूप कहीं छाँव मिलती है, तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है। तो चलिए मुस्कुराते हैं इस गीत के साथ, और हो सके तो बताइएगा कि इस गाने में आपको किस गायक कलाकार की आवाज सुनाई दे रही है, सुरीला सफर का या अंतिम गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत जमीर फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोल सपन चक्रवर्ती ने इसे संगीतबद्ध किया और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, किशोर कुमार की आवाज में था यह गीत। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से आपका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। एक समय की बात है, एक राजा युद्ध में हार गया और उसके सभी सैनिक मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए वो गहरी गुफा में छिप गया। शत्रु सैनिकों ने गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया। राजा अब गुफा के अंदर फंसा हुआ था, भूखा प्यासा और पूरी तरह से निराश। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि बेटा, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बात याद आते ही राजा में नई ऊर्जा आ गई और उन्होंने गुफा से बाहर निकलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर से सेना संगठित कर शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस भी पा लिया। दोस्तों, यानी परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसी समय आप वास्तव में हार जाते हैं। जब तक आदमी खुद से नहीं हार जाता, उसकी हार नहीं होती। हाँ, यानी अगर आप खुद से नहीं हारे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको चाहकर भी नहीं हरा सकती। अब देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, हार का मतलब सीखने का पहला प्रयास है। इसलिए असफल होने पर कभी हार नहीं माने। उनका ये भी कहना था कि पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि दूसरी हार किस्मत के भरोसे की बात कही जा सकती है। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें।

निराश होने का मतलब है ये महसूस करना कि आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे। हमारे अंदर वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। खुद पर भरोसा रखिए और रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हर काम आसान है, बस अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, यही मायने भी रखता है। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधी मंजिल हासिल कर लेंगे ये सोचकर। अगर हम शहीद भगत सिंह की बात करें तो उनके लिए हार मान जाने का मतलब अपने सिद्धांतों और देश के प्रति निष्ठा से समझौता करना था। भगत सिंह हार मानने या घुटने टेकने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी को मौत के फंदे पर भी सिर ऊंचा रखना चाहिए। उनके लिए हारना आत्मसमर्पण था। हालांकि हर नाकामी आपको सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। जब सब कुछ कठिन लगने लगे तब भी डटे रहना ही सफलता की कुंजी है। हार न मानने वाले ही अंत में सफलता पाते हैं और ये हम सभी जानते हैं।

दोस्तों, व्यक्ति को कभी अपनी जीत हो या हार, उसे लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। व्यक्ति को जीतने से पहले न तो जीत और न ही हारने से पहले कभी हार माननी चाहिए। देखिए ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी हार का सामना करता है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हार किसी अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि ये उस मोड़ का उदाहरण है जहाँ से नई शुरुआत संभव होती है। जीत के क्षणों में हम खुश हो जाते हैं, पर हार के क्षणों में हम परिपक्व होते हैं। हाँ, याद रखिए, हार के क्षणों में हम परिपक्व हो जाते हैं, और यही परिपक्वता भविष्य में हमारी विजय की असली वजह बनती है। याद रहे श्रोताओं कि आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जिस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे, वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हार मानना जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान के भीतर असीम क्षमताएं हैं। उनका मूल मंत्र था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
3: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और

0: न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
3: स्मैश द पैट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पैट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
4: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
1: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने

0: और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी शमशाद बेगम की आवाजों में. सुनेंगे हम मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपे नैयर के संगीत के साथ. आइए सुनते हैं अगला गीत रानी रूपमती फिल्म से. लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और एस एन त्रिपाठी का है संगीत.

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: जो हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत तीसरी गली फिल्म से। हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं तीसरी गली फिल्म से यह गीत हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

आइए चलते सदाबहार नगमे में सुनते हैं आखिरी गीत फागुन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में, खमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। इस गीत के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

0: की सहेली। सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को और दीपा तुमको भी प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, सभी हमारे सभी सुनने वाली सखियों को, श्रोता भाइयों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और भी शुभकामनाएं मैंने तुम्हें दी, तुमने मुझे नहीं दी ना सुनने वालों को।
1: भाई देखो, दी ना नमस्कार, दिए ना भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने परिवार का, खुद का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
0: और कल हम ये शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं भाई, कल से जो उत्सव की धूम शुरू है पूरे देश भर में।
1: जी हाँ,
0: ये उत्सव है नवरात्रि का, जो पूरे 9 से 10 दिन तक देश में यूं ही कहते हैं ना, रंग बिरंगी रौनकें नजर आएंगी, खूब सारी लाइटें होंगी, खूब सारा नाच गाना होगा, पकवान बनेंगे, वहीं जो बहुत सारे लोग हैं उपवास करते हैं, जहां पूजा पाठ का महत्व है वहीं नाच गाने का महत्व है, उजाले का महत्व, बहुत सारे रंगों का महत्व।
1: और देखो ना, ये पूरे नवरात्रि के 9 दिन हर दिन को एक रंग समर्पित कर दिया गया है ना, जैसे आज का रंग है सफेद। पता है श्रोताओं, आज ऑफिस में यहाँ पर विविध भारती में ज्यादातर लोग सफेद कलर के कपड़े पहनकर आए, बड़े प्यारे लग रहे हैं, सब एक दूसरे को देखकर एक स्माइल दी। उसके अलावा बाहर भी जब हम घर से दफ्तर तक आ रहे थे तो बहुत सारे लोग सफेद या उसके कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने हुए, और कई सारे लोग तो इन दिनों में चप्पल या कुछ किसी भी तरह का,
0: बिल्कुल चप्पल जूते भी नहीं
1: पहनते हैं, उस तरह के लोग भी दिखे। और जी हाँ,
0: उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी भक्ति करने के तरीके होते हैं लोगों के। बाकी सुबह का जो समय होता है ना, हर घर से, अमूमन हर घर से आरती की ध्वनियां नजर आएंगी, तो वहीं जब शाम के वक्त हम निकलते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं या सोसाइटी हैं, बिल्डिंगे हैं, सब जगह पर बहुत ऊंची आवाज में जो गरबा की धुनें जलती रहती हैं, वहां थिरकते छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के स्त्री पुरुष बच्चे सभी नजर आते हैं। और अभी जहां हम एक रंग में देख रहे हैं, वहां रंग बिरंगे रंग भी हमें नजर आएंगे, रंग बिरंगे परिधान में भी
1: जी,
0: और वहीं सफेद रंग में भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमें नजर आएंगे। तो ये माहौल ही ऐसा होता है,
1: माहौल ही कुछ ऐसा है, खुशनुमा हो जाता है, सकारात्मक रहता है, हर जगह पॉजिटिविटी रहती है। और आप किसी को जानो या ना जानो, एक चेहरे पे मुस्कान जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, वो बड़ा प्यारा लगता है ना।
0: बिल्कुल, चाहे वो कहीं कीर्तन भजन चल रहा हो घर में, या शाम को गरबे का समय हो, हम जब देखते हैं ना भक्तिमय माहौल में और नृत्यमय उत्सवमय माहौल में हम डूब जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे माहौल को हम बनाएं, गीत सुने?
1: बिल्कुल, वो माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए, है ना।

0: तो भाई दीपा, नवरात्रों की धूम तो है, लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ना है नवरात्रि की बात के बाद में, तो हम बताएं कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो छोटी छोटी सी कुछ आदतें होती हैं, हम सब में होती हैं, लेकिन जब उनमें बदलाव करना पड़ता है तो उनके जो परिणाम आते हैं वो बड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बदलाव कैसे? सकारात्मक बदलाव।
0: हाँ
1: भाई, बदलाव तो कैसे भी हो सकते हैं। अब आप कहे कि भाई कोई दिन भर बहुत सक्रिय रहता है और अचानक से आलसी बन जाए, तो वैसे वाले बदलाव नहीं होने चाहिए। ये बदलाव पॉजिटिव वे में होने चाहिए और तभी तो देखिए हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और इसीलिए बात हम करने चले हैं, विश्व गठिया दिवस पे भी हम छोटी सी बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में क्या जरूरी है जानना।
0: बिल्कुल, जब उम्र बढ़ती है तो सभी को कहीं ना कहीं ये जो गठिया है या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या आ ही जाती है। तो कैसे पहचाने, क्या बचाव करें, थोड़ी सी इस पर बात होगी। एक और खास दिवस है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और अभी सोमवार में हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन। तो आज जिस खास व्यंजन की हम बात करेंगे, देखिए वैसे तो उपवास के दिन भी है नवरात्रि में, लेकिन जो उपवास नहीं कर रहे हैं, सब तरह से खा पी रहे, वो इन पकवानों का जरूर से मजा रहे। तो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो चीजें बनाई जाती हैं, उन्हीं में से एक है फरा, ऐसे मुठिया भी कहते हैं, और एक है अंगाकर रोटी। इनकी बात आज होगी।
1: बिल्कुल, कैसे बनती है, क्या खास है, वो सब हम जानेंगे। और भाई कुछ मैं कहूँ, कुछ
0: कुछ तुम कहो। बात तभी बनती है ना।
1: हाँ,
0: कि एक जना बोलता रहेगा ना, तो वो बात लगेगा कि भाई कितनी बकबक कर रहा है कि सामने वाले को मौका ही नहीं दे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन संवाद तभी होता है या बात पूरी तभी होती है जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर किसी एक को शिकायत हो तो जो सामने वाला है वो शिकायत को दूर कर दे। जैसे आज एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत आई है हमारे एक श्रोता भाई की है शायद, कि भाई इस आरंभ हो चुका है सप्ताह का, भाई देखिए हाँ आज तो सोमवार है और माता रानी का दूसरा नवरात्रा है, और आप ही देखिए ना सखी सहेली कार्यक्रम में नवरात्रों के विषय में कुछ भी नहीं है। उपवास, पूजा पाठ या भोजन व्यंजन आदि विशेष तौर पर जो बातें की जाती हैं, और उनको लगता है कि ये तो माता बहनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता का डिपार्टमेंट हर एक के लिए है, ये किसी खास तौर पे महिलाओं के लिए

0: नहीं है, और नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक विषय अवश्य होना चाहिए, तो ऐसा उन्हें लगता है।
1: ये पूरा सप्ताह जो है वो नवरात्रि की धूम चलने वाली है। अलग से जो हमने विषय जिन पर चर्चा के लिए लिखे वहां हमने नवरात्रि को नहीं लिखा किसी विषय को, लेकिन आगे आने वाले दिन में ये शामिल होने ही वाले हैं। और जब हमने शुरुआत की नवरात्रि की,
0: नवरात्रि की धूम से की, और आपको देखिए ना एक सुंदर सा गीत सुना करके बिल्कुल उस भक्ति भाव में आप सब शायद सरोबार हो भी चुके होंगे।
1: हमारे श्रोता ने शिकायत तो की है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भले हो मन में लेकिन वो नहीं लिख पाए हैं, तो भी शिकायत उनकी दूर हो गई और उन्होंने हमसे शिकायत की, कुछ उन्होंने कहा कुछ हमने कह दिया, बात तभी होती है। और ये जो जुमला है ना कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात तभी बनती है दीपा, क्योंकि ये रिश्तों का पूरा व्याकरण है। हम सभी बोलना चाहते हैं और कोई हमें सुने, हम ये भी चाहते हैं। बोलने से गला हल्का होता है और सुनने से मन, कोई जब हमें सुनता है तो हमारा मन हल्का होता है, और बात तभी बनती है जब गला और मन दोनों पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसका एक मतलब ये भी है कि आपस में बातचीत करना, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करना और संवाद का माहौल बनाना। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता दीपा, बल्कि दो लोगों या दो पक्षों के बीच आपसी जुड़ाव और आपसी समझ की बात भी है।
0: बिल्कुल सही कहा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसमें सबसे सुंदर पता है क्या शब्द है चंचल? हम।
1: क्या बात है। हाँ,
0: और जब तक मैं और तुम है ना, तो फिर देखिए बहस है, जहां हम आ गया वहां बात बन जाएगी, और बात को तुमने क्या किया से निकालकर हम इसे कैसे ठीक करें, बिल्कुल इसमें तब्दील हो जाएगी, होगी या नहीं होगी?
1: बिल्कुल, और तब बात बन भी जाएगी। और दो लोगों के बीच जब संवाद होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे की बात तक रखे, जिसे संवाद का संतुलन जो है वो बना रहे। आपसी जुड़ाव आत्मीयता अक्सर रिश्तों दोस्ती या प्रेम में इस्तेमाल होती है, और दो लोग जब अपनी भावनाएं अपने सुख दुख और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो बात तभी बनती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को सुनना और समझना दोनों जरूरी है, इसमें केवल कहने ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनने और समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो। अब देखो ना, आजकल संवाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है चंचल कि एक बोलता है तो दूसरा इंतजार करता है कि पहला कब चुको ताकि वो अपनी बात शुरू कर दे। अब देखिए ये संवाद नहीं है, ये तो भाई मोनोलॉग हो गया है या नहीं दोस्तों? क्योंकि जो आपस में टकरा रहा है मतलब बोलने ही नहीं दे रहा है अगर दूसरे को, तो फिर वो कैसे आपसी बातचीत हुई? और जब कोई अपनी बात कहना शुरू करता है उसके पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहे हमें तो बस गलत ही लगने लगती है। ऐसे संवाद से बात करने के बजाय बिगड़ ही जाती है। तो जब भी बात कहो साफ कहो, लेकिन थोड़े मीठे अंदाज में कह दो।
1: और शब्दों के पीछे का दर्द भी कई बार हमें जब कोई बताता है तो हम उनसे अनसुना कर देते हैं। कोई हमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हम उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कुछ शब्द हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रहे कि वो कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: ना कहकर भी उसने कहा लेकिन हम इन शब्दों को सुन नहीं।
0: कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है लोगों में कि वो प्रेम भरे शब्द बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके गुस्से में भी वो जो उनके प्रेम को हमें समझना पड़ता है।
1: जब कोई गीत या गजल बनती है ना तो उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं, तभी वो अच्छा लगता है, वो है लय, सुर, उसके शब्द और एहसास। इसी तरह से बात भी जब हम कोई करते हैं तो बात तभी बनती है, उसमें चार सुर होने चाहिए, ठहराव, सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास।
0: बिल्कुल, और जब हम ठहराव यानी मन को शांत कर लेंगे, वहां से बात शुरू करेंगे, तो गुस्से में कहीं की गई जो बात है ना, सच भी हो तो जहर लगने लगती है। लेकिन इसलिए जब आप जब आए तो 20-25 मिनट के लिए मौन हो जाएं, यानी आप कभी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अगर यह गुस्से में है तो थोड़ा सा चुप रह जाइए, इससे होगा ये कि 90% बातें तो वहीं खत्म हो जाएंगी।
1: बिल्कुल,
0: गुस्से में, क्योंकि गुस्से में की गई बात और फिर देखिए वो बात का कहां बतंगड़ बन जाता, देर नहीं लगती।
1: और जब कोई बात अपनी हमसे कह रहा है तो सच्चे मन से उसे सुनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें मोबाइल पर हैं, चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ है और हम उसकी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब उसे दिखा रहे हैं कि हमने सुना लेकिन हमारा ध्यान या तो अपनी किसी और बात पर है, हमारे मोबाइल पर है, या उसे बीच में जब अगर हम टोक देते हैं उसकी बात को पूरा होने से पहले ही, तो वो अपनी बात कहने के लिए जो अपना मन हल्का करना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पूरी तरह से समझता है, हमारे मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह से भांप लेता है और हमसे वो बात करता है। फिर भी अक्सर हम घुमा फिरा के कह देते हैं ना कि कुछ नहीं सब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो

0: तूफान चल रहा है, उसे वो हमें समझ लेता है और कई बार बिना कहे ही वो बात संवाद जो है दोनों के बीच में हो जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बात करने से ही बात बनती है, खामोश रहने से तो दूरियां पनपती है।
0: और इसीलिए दीपा, ना तुम चुप रहो ना हम चुप रहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जो उलझी है गांठ दिल में तो बातों ही बातों में वो सुलझे।
1: बिल्कुल, संवाद कोई जादू नहीं, आदत है चंचल, और आदत एक दिन में नहीं बनती। हम सब एक अच्छी शुरुआत करें कि हर रोज जब भी समय मिले किसी एक अपने से सिर्फ 5 मिनट बिना सलाह के, बिना जज किए, सिर्फ सुनने सुनाले वाली बातें करेंगे, करके देखिए, मन हल्का लगेगा, यकीन मानिए।
0: बिल्कुल, अब जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। और सुन लेते हैं गाना।

0: जब बात मन में रह जाती है ना तो उलझने बढ़ जाती हैं, इसलिए मन की बात कह दीजिए और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें ऐसा होना चाहिए। इसी पर एक बड़ा बहुत अच्छा संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जहां एक ही बोले वो भाषण होता है, संवाद नहीं। जहां दोनों बोले और दोनों सुने वहां संवाद बन जाता है। बिना संवाद के मन बंद हो जाते हैं। कहने से मन हल्का होता है, सुनने से भी मन बड़ा होता है। और आज की सबसे बड़ी कमी यही कि सबको कहना है पर सुनना किसी का नहीं है। इसीलिए ये पंक्तियां हमें बराबरी का सम्मान सिखाती हैं कि ना तुम हमेशा सही ना हम हमेशा सही। इसीलिए घर में, रिश्तों में, समाज में अगर हम थोड़ा सुन लें, थोड़ा कह दें तो आधी दूरियां, आधी लड़ाइयां खुद ब खुद मिट जाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से एक और संदेश है, कह रहे हैं कि साझा अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, रिश्तों में ताजगी और अपनापन बनाए रखती हैं। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं और एक दूसरे के मन की थाह ले लेते हैं तब विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि जहां ना शब्दों की कोई बाध्यता हो ना भावनाओं पर कोई पहरा हो, बस मन हो, संवेदनाएं हो और एक दूसरे को सुनने और समझने का सुंदर सा सिलसिला हो।
1: बहुत बहुत सुंदर कहा। और एक संदेश और है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने दिल की बात तो हमारी बात, हमारी बहुत सारी व्यर्थ जो नेगेटिव बातें वो निकल जाती है, पर हम सिर्फ कहें ही नहीं, अगला जो सुन रहा है उसकी भी कुछ बात सुने, परिवार में कुछ लोगों के प्रति कुछ

0: ऐसे विचार आते हैं जो अच्छे नहीं होते, पर अगला कोई आपका दोस्त या प्रिय सुनकर और आपको सुझाव देता है, उन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।
1: एक अन्य संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक तरफा बात अक्सर बोझिल हो जाती है और संवाद एक तरफा भाषण बनकर रह जाता है। साझा अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, तो ये अगर होगा तो रिश्तों में ताजगी और अपनापन बना रहेगा। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं, एक दूसरे के मन की थाह लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन केवल अपने हिस्से की बात कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की कला भी है। जब हम कहते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता है।
1: तो भाई सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता है, तो सुने गीत।
0: चलिए चलिए।

0: हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी एक सखी लिखती है कि आज विश्व गठिया दिवस है, मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, अगर मैं एक दो दिन भी नहीं चली तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसीलिए आप इसका सिर्फ एक ही इलाज है या परहेज है कि आप शरीर के अनुसार खाना खाएं, कुछ वात की चीजों से अपने आप को दूर रखें, शरीर को एक्टिव रखें, नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करें, दुरुस्त दिनचर्या, सही खान पान इस रोग से निजात दिलाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, एक सक्रिय मतलब फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत जरूरी है हर तरह की चीज के लिए, क्योंकि देखिए ना, गठिया एक रोग नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा बीमारियों का ये समूह है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आ जाती है। और अगर एक अनुमान के अनुसार हम देखें तो भारत में, हमारे देश में करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से इस गठिया से पीड़ित हैं। लेकिन होता यह है कि 70% लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बच्चों में भी हो सकता है।
0: सही कहा दीपा, और कई तरह का गठिया रोग होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें सबसे आम तौर पर ये सबसे आम है, और लगभग जब 40-45 की उम्र होने लगती है उसके बाद कुल और घुटनों में घिसाव पाया जाता है, तब ये दर्द उठते बैठते, जिसे इतने कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में चला फिरा नहीं जा रहा, उस तरह का होता है। इसी तरह से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें सुबह उठते ही हाथों में अकड़न सी महसूस होती है और 30 मिनट तक मुट्ठी खुलने ना खुलने जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है। इसी तरह से गाउट भी एक गठिया का प्रकार है, जिसमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये युवा में सुबह कमर में जकड़न जैसी समस्या इसमें आती है।
0: तो बिल्कुल, ये कभी ना समझे कि ये बढ़ती उम्र में ही होता है, कई बार कम उम्र में भी ये समस्या आपको जकड़ सकती है।
1: बिल्कुल, और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जैसे सुबह 30 मिनट से ज्यादा जोड़ों में जकड़न हो, 3 दिन से ज्यादा एक ही जोड़ में सूजन आना है, या बिना चोट के भी दर्द जोड़ों में बना अगर रहता है या बढ़ता जा रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, ये चलने उठने बैठने इन सब में तकलीफ होना, इन सब लक्षण अगर ये है तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है यानी रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। और देर करने से देखिए जोड़ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, फिर समस्या को समाधान करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कि समय रहते बचाव ज्यादा अच्छा रहता है। और गठिया रोग से बचने के लिए जैसे हमारे संदेश में भी लिखा गया था ना कि 30 मिनट, अगर आप ज्यादा समय ना कर सकें 30 मिनट टहल लीजिए, तैरना, साइकिल चलाना जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। बढ़ते वजन को भी नियंत्रित करना जरूरी है, अगर लगातार आप देखें कि आपका वजन बढ़ रहा है तो वहीं उसे भी नियंत्रण करने की कोशिश करें। धूप में 15 मिनट तक विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और जो सुबह के उगते सूरज की धूप होती है उसी में विटामिन डी होता है। ऐसा ना समझे कि सारा दिन में से कभी भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, विटामिन डी आपको मिलेगा
1: जी।
0: अदरक, हल्दी और या ओमेगा 3 वाली जो भी चीजें हैं, जिसमें अखरोट, अलसी ऐसी चीजें भी होती हैं, इन्हें अपनी नियमित खुराक में शामिल किया जा सकता है, और अकड़न होने पर थोड़ा सा ना गर्म सिकाई भी की जा सकती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल, और जोड़ों में दर्द रहता है ना चंचल, तो ठंडे पानी से नहाए इस तरह से हमेशा सलाह दी जाती है, और देर तक एसी में बैठे रहना, क्योंकि आजकल हर घर में ही तो देखिए एयर कंडीशन है ही, तो इसमें भी दर्द बहुत बढ़ जाता है। फिर पालथी मारकर घंटों बैठना या सीढ़ियां ज्यादा ना, ये सब में दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द का जो कोई भी पेन किलर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा सकता है।
0: ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है, आपको किसी भी तरह का दर्द होता है और उसमें अगर आपने बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर लिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा दर्द हो, और खासतौर पर गठिया की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय सलाह बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और दर्द अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है तो पहले ही आराम, जो पहले क्या करना चाहिए, आराम तो उसका इलाज है ही, ये सोचकर बिल्कुल हिलना डुलना जो है बिल्कुल ना करें, ये उचित नहीं है। और गठिया ला इलाज नहीं है देखिए, पर अनदेखा करना ये भी सही नहीं है। सही समय पर सही जानकारी और व्यायाम से हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं,
0: और इसीलिए दर्द को अपना स्वभाव बिल्कुल मत बनने दीजिए। जोड़ हिलेंगे जीवन तभी मिलेगा। और इस तरह के विश्व स्तर पर जब भी कोई दिवस मनाए जाते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन की थीम रखी गई है सही जानकारी बेहतर जीवन।
1: बिल्कुल, और अभी क्या करना चाहिए,
0: एक अंतराल का समय है,
1: चलिए।

श्रोताओं, विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और दीपा, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले गीत सुनने चलिए।

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता
1: बिल्कुल
0: है। और जब रात को गरबा होता है ना तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं या ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे दो राउंड लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम गठिया दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस।
1: बिल्कुल,
0: ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी

0: बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपने बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब बना उसका सम्मान करना। अगर किसी का राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल करना।
1: आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है हम उनको ही सच मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की। पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है। खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल सही कहा। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
0: चलिए।

0: चंचल
1: बोलिए।
0: देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटे छोटे हम वो किस्सा कहानी जो पड़ी है बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है
1: जी।
0: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
1: है। सही कहा। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
0: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी जिंदगी, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से। अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए, उठते ही मोबाइल देखने की ये जो आदत है

0: बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए कुछ समय को, और नई चीजें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
1: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप रोजाना खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं। और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए रोज केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीजें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
1: एक छोटा सा संदेश, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इसे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर जरूरी खर्चों से बचें और खरीदारी से पहले सोच ले कि क्या सच में वो चीज हमें जरूरत है उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम बटन, उसके पहले जरा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए, और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती है।
1: ऐसे ही एक संदेश कहता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन जरूर हो जाएगा।
0: बिल्कुल, हम फिर आ जाते हैं अब एक और जरूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल, और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम करते हैं जरा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में सारी आदतें देखिए बदलने वाली नहीं है, इसकी कोशिश भी हमें करनी नहीं चाहिए। बस शुरुआत एक या दो छोटी अच्छी छोटी छोटी आदतों से करिए, नियमित रूप से उसे अपनाकर देखिए तो सही, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
1: एक छोटी सी आदत हमारी भी है कि हम बीच में गाने सुना देते हैं, वो हमें रोकनी नहीं।
0: ये तो बहुत अच्छी आदत है।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो का। मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए।
5: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी, ये एक पारंपरिक वहां के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पन पूर्वा रोटी भी कहते हैं क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं, एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंद ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है, आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है और ऊपर से भी आपको गर्म अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहां पर पारंपरिक रूप से।
4: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत, चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, फरा की जो व्यंजन विधि जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रह गया। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि पर अब तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसके लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीजें, इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिये की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है और हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं और जो ताजा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको जरूरत के अनुसार, अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते हैं। और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी
0: कहा जाता है। अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
1: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सभी।
1: बिल्कुल,
0: चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना।
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज, इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग की, भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया।
2: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
1: हाँ,
2: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। सर,
1: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त कि जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता है।
2: बहुत बहुत
1: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट।
2: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर, हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है, बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं,
1: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
2: हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको। हम लोग उस समय

0: को निकाल पाए।
1: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं।
2: हाँ,
1: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है?
0: जो हम लोग है तो इंसान ही ना
1: जी,
0: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत एक दो साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है। वो न्यूज देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
1: जी जी,
0: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते
1: जी,
0: बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत वक्त बीत गया,
0: आसमान तो... जमीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पे पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीजें हैं मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है फिट है, एज अ डॉक्टर
1: कोई कमी ना रह जाए,
0: हाँ कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
1: जी।
0: हाँ वो सर बड़ा पाव खा लिया था
1: जी,
0: मैं भी मानता हूँ, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, मतलब तो आपकी पहुंच गांव-गांव कोने-कोने में है,
1: तो ये पूरी दुनिया में,
0: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए, हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत जरूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना,
0: हाँ,
1: और पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
0: बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, तो कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो

0: उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है, और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है,
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बात है उनको
0: वो इग्नोर करते हैं
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, अरे कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा, 70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे।
1: डॉक्टर साहब ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहाँ एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोरदा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी,
0: ये जीवन है इस जीवन का बहुत,
1: देखिए मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा,
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वैन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोए तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल,
1: बट हाँ फिर भी हम डॉक्टर हैं, हम लोग तो, हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी,
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15-20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है सर मेरे ख्याल से। इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें, हम दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी,
1: आप स्ट्रेस में है तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना।
0: बिल्कुल,
1: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर।
0: जी जी,
1: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये, चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन, जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और ICU तक मामला चला जाता है, इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ, तो बारिश का एक मौसम का एक अलग मज़ा है, लेकिन मज़ा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और ख़ासकर इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें,
0: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता, क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं,
1: AC
0: में होते हैं, पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
1: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
0: जी जी,
1: आप देखिए ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें,

0: और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है
1: जी। एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है
0: बराबर,
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
0: सही बात
1: है ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को, इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा बहुत, अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है और उसके ही परिणाम ही आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
0: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10 20 25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही अब हमने यूज कर करके, मिस यूज करके, यूज नहीं करके, हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
1: कि दवाएं असर ही नहीं कर,
0: असर ही नहीं कर रही है। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन हाँ बस कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाए, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था। वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है, जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है, आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप
1: जी,
0: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें, और दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक
0: बनता है, बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें
1: जी।
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस के, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो
1: कर,
0: क्या करेंगे हम। ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो
1: जी। डॉक्टर साहब अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बहुत।
1: तो आपकी पसंद का अगला गाना कौन सा होगा।
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है, ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है, जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं, जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था और हम लोग उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं, कहे सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिक की, वो जब सामने से तब हमारा डर खत्म हो जाता है, वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता, यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्य सुनाता हूँ।
0: जी,
1: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
0: संगीतकार रवि की।
1: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
0: जी जी,
1: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला, तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा, हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा हाँ, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब, आपने मेरा नाम पढ़ा क्या, बोर्ड पे नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
0: अरे क्या बात
1: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे,
0: कमाल के इंसान। मेरा भी उनसे एक नाता रहा है। और
1: अच्छा अच्छा,
0: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुना।
1: हाँ हाँ,
0: तो उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
1: अरे अरे, बहुत कमाल के कलाकार।
0: अभी जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हो या बर्न विक्टिम्स हो, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
1: अपने
0: उनको कैसे संभालते हैं?
1: मैं सफदरजंग के बर्न्स यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
0: ओ ओ ओ
1: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो
0: जी।
1: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में।

0: ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे, फिर अचानक फोन बजने लगा, हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहां भी हो जितने भी दोस्त हो सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है, और मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था वो देख नहीं पाया, डॉक्टर हो के वो वहां पे फेंट कर गया,
1: ओहो
0: और किसी के हाथ नहीं किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना बेबस, वो मेरे मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे इसे रोंगटे खड़े जाती है यार। वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
1: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
0: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ अच्छा लगता है, मैंने बोलता है जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा एक डॉक्टर
1: बिल्कुल,
0: को।
1: आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
0: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावदा, ओ सनम ओ

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है।

0: अगर वो सही समय पे नहीं आते सर, तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता।
1: जी
0: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
1: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
0: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
1: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
0: साथ वाले वो उनको
1: पास पड़ोस के लोग हैं।
0: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जो हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
1: तुरंत पहले तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ें,
0: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
1: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने।
0: हाँ, नुस्खे वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
1: झाग वाग निकल रहा है,
0: हाँ वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
1: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए।
0: देखिए, जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है।
1: ओ,
0: जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी भी, टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है। और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी, अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
1: जी,
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है, आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर है जो इससे जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
1: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा,
0: आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता आ रही है,
0: सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना चाहिए।
0: कहीं भी सिमेट्री, जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है, वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आंखों दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है।
1: इन दोनों परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए, जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया उससे

0: बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था तो ऐसा नहीं। नहीं बाबा, आसपास पहले वहां पहुंच जाए आप, एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना। वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको। आप अनजान शहर में है और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है। आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत। ठीक है, भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते, भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी एबनॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे।
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता उसने आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं। उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है बट आपके माध्यम से भी हम उसको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं दिल्ली में था और मजा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा लेता हूँ, मजाक मजाक, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ हाँ, और वो गाने लिखता भी था। कॉलेज में भी बहुत अच्छा हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा।
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है बस, गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहां से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया। क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है और सबसे भी ज्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी,
1: सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं यार सेफ्टी फर्स्ट। अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना। वो बच्चा रोएगा बट ठीक है, हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन, हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
0: उसकी जान बचाना है।
1: उनकी जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देख के इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ, आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना,
0: लोगों को इस बात को समझना चाहिए। हाँ, कि डॉक्टर्स हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं
1: और
0: आईसीयू में खास तरह का बर्ताव
1: किया जाए।
0: जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए
1: और
0: इंतजार किया जाए।
1: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट कभी कभी देखिए हम इंसान ही है।
0: जी जी,
1: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बोलेंगे, शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें

0: सुने और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने काम, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न, सीढ़ियां चढ़ते वक्त जोड़ों में दर्द या हाथों की उंगलियों में सूजन, कई बार हम इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मानकर टाल देते हैं, लेकिन ये लक्षण गठिया जैसी बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। और इसी बात को समझने और जानने के लिए हर वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गठिया और उससे जुड़ी दूसरी मांसपेशियों और जोड़ों की बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ताकि लोग समय रहते लक्षणों को पहचानें, उचित चिकित्सीय सलाह लें और अपने जीवन की गुणवत्ता बनाए रखें। गठिया केवल बुजुर्गों को होने वाली बीमारी नहीं है, ये अलग अलग उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के भीतर मौजूद उपास्थि धीरे धीरे प्रभावित होती है, जिससे दर्द और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। वहीं रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे सूजन, दर्द और सुबह के समय लंबे वक्त तक अकड़न से महसूस हो सकती है। और दोस्तों, जानकार बताते हैं कि गठिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन, गर्माहट, सुबह उठने पर अकड़न और सामान्य गतिविधियों में कठिनाइयां इसके प्रमुख संकेत हैं। और यदि ये लक्षण बार बार दिखाई दें या लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। केवल दर्द की दवा खाकर समस्या को दबाते रहना उचित नहीं, क्योंकि कुछ प्रकार के गठिया में समय पर उपचार न मिलने से जोड़ों को स्थायी नुकसान भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि हम अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कर क्या सकते हैं। सबसे पहले, नियमित और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करें। हल्की सैर, डॉक्टर की सलाह से किए जाने वाले व्यायाम और जोड़ों को गतिशील रखने वाली गतिविधियां लाभदायक हो सकती हैं। दर्द होने पर हर प्रकार का व्यायाम बंद कर देना जरूरी नहीं, लेकिन तेज दर्द या सूजन के दौरान गतिविधियों में बदलाव रखना जरूरी होता है, ऐसा डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट्स बताते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संतुलित आहार, भोजन में दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। वजन को संतुलित रखना भी इसमें काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अतिरिक्त वजन घुटनों और कूल्हों जैसे भार उठाने वाले जोड़ों पर दबाव बढ़ा सकता है। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, धूम्रपान से बचना जरूरी है, क्योंकि ये आदतें समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए दोस्तों, विश्व गठिया दिवस हमें ये याद दिलाता है कि दर्द को उम्र का अनिवार्य हिस्सा मानकर सहना जरूरी नहीं। जागरूकता, सही जानकारी और समय पे उपचार से अनेक लोगों को सक्रिय और बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। आइए स्वस्थ जोड़ों के साथ एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं और इन कदमों से ही जीवन की राह आसान बनाते हैं।

ये वो वाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, इतिहास को खंगालें तो कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे मिलते हैं जिनका जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि वह अपने समय से सवाल करने और समाज को नई दिशा देने का भी साहस होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने राजनीति को सत्ता प्राप्त करने का माध्यम भर नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन और समानता स्थापित करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन समझा। आज 12 अक्टूबर साल 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि हमें उस विचारक और स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर देती है जिसने जीवन भर अन्याय, असमानता और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च साल 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर देश और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। महात्मा गांधी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। विदेश में अध्ययन करने के बावजूद उनका मन भारत की समस्याओं और आम जनता के जीवन से जुड़ा रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाई। डॉक्टर लोहिया के विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता था। वे जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की व्यवस्था के विरोधी थे। उनका मानना था कि जब तक समाज के वंचित लोगों को आगे बढ़ने के वास्तविक अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक लोकतंत्र की सफलता अधूरी रहेगी। वे महिलाओं की समान भागीदारी, आर्थिक विषमता में कमी और पिछड़े वर्गों के उत्थान के भी समर्थक थे। वे सत्ता के केंद्रीकरण और सरकार की नीतियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते थे। उनका यह विश्वास था कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सवाल पूछना और सरकार को जवाबदेह बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। आपकी सोच में भाषा का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था। वे चाहते थे कि शासन और शिक्षा आम जनता की समझ में आने वाले भाषा में ही हो, ताकि भाषा किसी व्यक्ति की प्रगति में बाधा न हो। उनका जोर इस बात पर था कि देश की नीतियां ऐसी हों जिनमें गांवों, छोटे शहरों और साधारण परिवारों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिले। और आज जब हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कर रहे हैं, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लें, मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखें, भेदभाव का विरोध करें और अपने आसपास समानता और संवेदनशीलता का वातावरण तैयार करें, क्योंकि किसी विचारक की वास्तविक विरासत उसके तस्वीरों या स्मारकों में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में जीवित रहती है जिन्हें समाज अपने व्यवहार से अपनाता है। और यही होगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

0: सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी

0: वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली में मौजूद एक छोटा सा अनाज न केवल हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अन्न की, जिसे आज पूरी दुनिया मिलेट्स के नाम से जानती है। श्री अन्न यानी मोटे अनाज हमारे पारंपरिक खानपान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी और सांवा जैसे अनाज सदियों से भारतीय रसोई की पहचान रहे हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों के बीच कहीं न कहीं ये अनाज हमारी थाली से दूर होते चले गए। अब एक बार फिर इनके महत्व को समझने और इन्हें अपनाने की जरूरत हम सबको महसूस हो रही है। दोस्तों, श्री अन्न को पोषण का अच्छा स्रोत माना जाता है। इनमें से कई अनाज फाइबर, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फाइबर पाचन को बेहतर रखने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जबकि बाजरा और ज्वार ऐसे अनाज भी शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हालांकि हर अनाज का पोषण अलग अलग होता है, इसका लाभ हमारी संपूर्ण खान पान की आदतों पर भी निर्भर करता है। अब देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी फिटनेस, बेहतर जीवन शैली और संतुलित आहार को लेके पहले से ही अधिक जागरूक हो रही है। ऐसे में श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सुबह के नाश्ते में रागी का दलिया, दोपहर में बाजरे की रोटी, शाम को ज्वार से बना हल्का नाश्ता, इन छोटे छोटे बदलावों से भोजन में विविधता भी लाई जा सकती है और अच्छा स्वास्थ्य भी। लेकिन श्री अन्न का महत्व केवल हमारी सेहत तक सीमित नहीं है, इसका संबंध किसानों और पर्यावरण से भी है। कई प्रकार के मोटे अनाज कम पानी में उगाए जा सकते हैं और कठिन से कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छी संभावनाएं रखते हैं। इससे उन क्षेत्रों के किसानों को विकल्प मिल सकता है जहां पानी की उपलब्धता सीमित है। हालांकि फसल की सफलता मिट्टी, मौसम और स्थानीय परिस्थितियों पर तो निर्भर करती ही करती है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपनी परंपराओं से जुड़ते हुए आधुनिक पोषण संबंधी समझ को अपनाएं, अपनी थाली में श्री अन्न को जगह दें और साथ ही जीवन के साथ साथ किसानों और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो वाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
2: दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि बाजार से सामान खरीदना, बिजली का बिल जमा करना हो या किसी दोस्त और रिश्तेदार को पैसे भेजने हो, मोबाइल से चुटकियों में पेमेंट हो जाता है। अब हर छोटे बड़े लेन देन के लिए जेब में नगद पैसे रखने की जरूरत पहले जैसी नहीं रह गई। डिजिटल भुगतान ने हमारे रोजमर्रा के कामों को काफी आसान बना दिया है। इसी बदलाव को हम कहते हैं कैशलेस अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों, कैशलेस लेन देन के फायदे क्या हैं? इसका इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डिजिटल भुगतान को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं वार्ताकार सोनाली ओझा, जो हमें कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही हैं। आइए सुनते हैं।
6: मैं सोनाली ओझा हूँ और आज मैं यहाँ कैशलेस अर्थव्यवस्था के विषय पर चर्चा करने आई हूँ। आज के आधुनिक समय में भारत देश में भी कैशलेस अर्थव्यवस्था के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हुआ है। कैशलेस इंडिया एक मिशन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू किया था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय उद्योग की तंगी को कम करना है, ताकि देश में बड़ी मात्रा में काला धन बैंकिंग प्रणाली में वापस लाया जा सके। इस मिशन की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई, जब सरकार ने 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को अचानक से अवमूल्यन कर दिया। कैशलेस अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें नकदी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय लेन देन के लिए वास्तविक रूप से पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल डिजिटल रूप में किया जाता है। इसमें सभी लेन देन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, बैंकिंग भुगतान प्रणाली जैसे NEFT, RTGS, UPI द्वारा किए जाते हैं। यह एक

ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैसे के भुगतान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो अधिकांश धन का लेन देन कागजी मुद्रा में न होकर डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन से किया जाता है। इसे कैशलेस अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वीडन वो पहला देश है जो कुछ ही सालों में पूरी तरह से कैशलेस हो जाएगा और इसी रास्ते में अब भारत भी चल पड़ा है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। और सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी में वो पैसे आते हैं जिनका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो आप बदले में उसे कुछ पैसे देते हैं, तो ये पूरी तरह से दुकानदार पर निर्भर करता है कि वो इस खरीदारी के ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करेगा या नहीं। अगर वो इस खरीदारी के ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर नहीं करता है तो उसे इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। और हर साल जीडीपी का 1-2% हिस्सा दुनिया भर में अनडिक्लेयर्ड ही चला जाता है, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और इससे टैक्स अवॉइडेंस में तो मदद मिलती ही है, साथ ही साथ जीडीपी का सही सही एस्टिमेशन भी नहीं मिल पाता है। और ये डेटा कई तरह की पॉलिसीज को बनाने में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन डेटा का सही सही एस्टिमेशन नहीं होने की वजह से कई तरह की पॉलिसीज बनाने में सरकार को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैशलेस ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो सरकार को बहुत ज्यादा डेटा दे देती है जिससे कि वो बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे मनी प्रिंटिंग और मनी ट्रांसफर की कॉस्ट बिल्कुल शून्य हो जाती है और साथ ही साथ ये पूरे प्रोसेस को काफी तेज बना देता है। आप घर बैठे जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे पेमेंट्स कर सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे क्राइम को रोकने में भी बहुत मदद मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आप सब जानते ही होंगे कि आज के समय में आप अच्छा काम करें या बुरा, हर काम को पूरा करने के लिए कैश की जरूरत होती है। और हम बात कर रहे हैं एक देश के कैशलेस होने की जहां आपका सारा पैसा जो है उस पर पूर्णतः आपका अधिकार होगा। आप जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि ये पैसा आपके पास ना होके बैंक अकाउंट में होगा तो आपके हर एक ट्रांजेक्शन पर सरकार की भी एक नजर होगी। अगर आप किसी पैसे को गलत जगह गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे किसी को घूस देने में या किसी तरह की चोरी का पैसा हो और आप उसे ट्रांजेक्शन में ला रहे हैं, तो इन पैसों पर सरकार की एक नजर होने से वो आपको वहीं पर रोक सकते हैं। आप कब कहां कैसे और किसको पैसे देते हैं हर डेटा सरकार के पास होती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इससे ब्लैक मनी यानी दो नंबर के पैसों को भी अलमारी में बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पैसे आपके पास कागजी रूप में नहीं होंगे। इसी तरह कई गलत काम में हुए ट्रांजेक्शन के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है क्रिमिनल के बारे में और क्राइम को कई हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। एक कैशलेस देश में हर तरह की कैश को डिटेक्ट किया जा सकता है। कैश की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये मार्केट में मंदी का बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि यदि देश की इकोनॉमी सही नहीं चल रही हो तो लोग पैसे खर्च करना बंद कर देते हैं और उसे सेव करके रखने लगते हैं। और अगर ये पैसा लोग कैश के रूप में सेव करके रख रहे हैं तो मार्केट में डिमांड्स तो घट ही रही हैं और साथ ही साथ बैंक के पास भी पैसा नहीं रहता है। बैंक उन लोगों को भी पैसा नहीं दे पाता जो पैसे को लोन के रूप में लेना चाहते हैं और इससे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और इस तरह मार्केट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मार्केट रिकवर नहीं हो पाती है। अगर पूरी इकोनॉमी कैशलेस हो तो मंदी के समय सरकार नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल कर सकती है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि अगर आपका पैसा बैंक के पास है तो आपका पैसा बैंक को रखने के लिए आपको एक फीस देनी होगी, और जैसे ही मार्केट स्टेबल हो जाएगा बैंक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को हटा देती है। नॉर्मली जब आप बैंक के पास अपना पैसा रखते हैं तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट पे करता है जो 4-6% के करीब होता है, और ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा घर में स्टोर करके रखेंगे तो आपके पैसों की वैल्यू दिन पर दिन घटती ही जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले आपने अपने लॉकर या अलमारी कहीं पे भी 20,000 रुपए स्टोर करके रखा है, तो आज 10 साल के बाद उस 20,000 की वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी। मतलब 10 साल पहले

0: आपने जो पैसे रखे थे 20,000, उसमें आप उतने सारे सामान खरीद सकते थे, लेकिन क्या आज के समय में, 10 साल के बाद आज के समय में आप 20,000 में उतने ही सामान खरीद सकते हैं जितनी 10 साल पहले खरीद सकते थे? और यदि यही पैसे आपने बैंक में रखे होते तो यही पैसे आज इंटरेस्ट के साथ डबल हो गए होते। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि कैश किसी भी इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाई देता है। तो इस सभी बातों से अब आपको लग रहा होगा कि 100% कैशलेस इकोनॉमी हम सबके लिए बहुत अच्छा है। यदि इन सभी बातों को ही ध्यान में रखा जाए तो बिल्कुल हाँ, कैशलेस इकोनॉमी बहुत अच्छा है। लेकिन यदि किसी चीज के इतने फायदे हैं तो कुछ न कुछ तो नुकसान भी जरूर होंगे। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी तरह से क्रेडिट या फिर UPI जैसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, जो कि नॉर्मल सिचुएशंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक हुए किसी भी आपदा की वजह से यदि आपके इलाके में बिजली ना हो, या आपका फोन चार्ज ना हो पाए, या आपके पास मोबाइल ही ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या अनपढ़ लोग हैं उन्हें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता हो, तो अपनी जरूरत का सामान भी आप नहीं खरीद पाएंगे इस स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में बैकअप का होना भी जरूरी हो जाता है। यदि कैशलेस इकोनॉमी के प्रभाव को देखते हुए जिन लोगों को ये नहीं आता, उन लोगों ने यह ट्रांजेक्शन करना सीख भी लिया फोन के द्वारा, तो मुमकिन है कि वो स्कैमर्स के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बन जाएं। और यदि किसी क्रिटिकल सिचुएशन में गलती से आपका अकाउंट लॉक हो जाए और ऐसे सिचुएशन में आप कंप्लेन भी करते हैं, तो इस तरह के मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है जो 5 से 10 मिनट में ही आपके अकाउंट को रिस्टोर कर दे। क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा वक्त लेते हैं तो आपको उस दिन कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो कैशलेस इकोनॉमी के सिर्फ फायदे ही नहीं, नुकसान भी हैं। तो मेरा मानना है कि कैशलेस इकोनॉमी का आइडिया बुरा नहीं है, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इस तरह की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर तैयार करें कि जिसमें चाहे ज्यादातर पैसा कैशलेस फॉर्म में ही हो, लेकिन कैश को बिल्कुल बंद ना किया जाए। और ये चॉइस हमेशा लोगों के पास हो कि वो किस तरह से पैसों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इन सब बातों से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच रही हूँ कि कैशलेस पेमेंट डिजिटल इंडिया का हिस्सा है और विकास का एक शक्तिशाली तरीका भी। इसमें भारत को एक ऐसे समाज में बदलने पर केंद्रित किया जाता है जो डिजिटल रूप से सक्षम है, जहाँ नकदी लेन देन नहीं है, पर फिर भी हमारी इकोनॉमी में कैश इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग इसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है उनके लिए कैश एक अच्छा साधन है। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में जानकारी और मनोरंजन का ये सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम से अनुमति दें आशीष वर्मा को। सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा से।

हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी कार्यक्रम।

नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में और मैं हूं आपकी रेडियो सखी सूर्या। तो सबसे पहले ये बताइए, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगी। बहनों, त्योहारों का मौसम आते ही घरों में रौनक बढ़ जाती है।

आती है। कहीं नवरात्रि की तैयारी चल रही है तो कहीं शादी ब्याह की धूम मची हुई है। घर की साफ सफाई, खरीदारी, कपड़ों की तैयारी और पकवान बनाने में हम महिलाएं खूब व्यस्त हो जाती हैं। बहनों, हमारे देश में त्योहारों का अपना ही आनंद है। आजकल तो नवरात्रि की रौनक दिखाई दे रही है, बाजारों में भी चहल पहल है, घरों में भी जोरों से साफ सफाई हो रही है और हम महिलाएं पूजा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बहनों, नवरात्रि की बात करें तो माता रानी के स्वागत के लिए हर घर में उत्साह देखने को मिलता है। कोई इस समय व्रत की तैयारी करता है तो कोई माता की चौकी सजाता है। बहनों, बात जब नवरात्रि की हो तो माता रानी की भक्ति और गरबा डांडिया का उत्साह भी इस टाइम देखने को मिलता है। इन 9 दिनों में घर घर में पूजा पाठ होता है, मंदिर सजाए जाते हैं और हम सब पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की आराधना करते हैं। इन दिनों चारों ओर भक्तिमय वातावरण रहता है। बहनों, शारदीय नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और नारी शक्ति का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। तो बहनों, इस अवसर को हमें अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर प्रेम, उत्साह और आपसी सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखे। बहनों जिस तरह हम त्योहारों में अपनों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं महिलाओं की बढ़ती उम्र और उनके स्वास्थ्य के बारे में। बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल के माध्यम से जरूर भेजें। हमारी ईमेल आईडी है grahalakshmi@gmail.com। तो बहनों, अपनी राय हमें जरूर बताइए और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। और बात करते हैं महिलाओं की बढ़ती उम्र और उनके स्वास्थ्य के बारे में। बहनों, उम्र बढ़ना जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। लेकिन अक्सर हम महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूल जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर की जिम्मेदारियां, परिवार की ज़रूरतें, इन सब का ध्यान रखते रखते हम यह भूल जाती हैं कि हमें भी आराम, पौष्टिक भोजन और अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। बहनों, हमें यह समझना होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। इसीलिए आज हम बात करेंगे महिलाओं की बढ़ती उम्र और उनका स्वास्थ्य विषय पर। बहनों, उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होते हैं। कई महिलाओं को थकान, कमजोरी, नींद में बदलाव, वजन बढ़ना जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। ऐसे समय में घबराने या अपनी परेशानियों को छिपाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़ती उम्र में हमारे शरीर को सही पोषण को भी की भी बहुत ज़रूरत बढ़ जाती है। इसीलिए पौष्टिक भोजन खाएं और पौष्टिक भोजन के साथ नियमित शारीरिक गतिविधि भी ज़रूरी है। इसीलिए हल्की एक्सरसाइज या अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करके शरीर को सक्रिय बनाएं। इसीलिए बहनों, अपने लिए थोड़ा समय निकालें और वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। बहनों, इसके साथ ही बढ़ती उम्र में नियमित स्वास्थ्य जांच को भी
अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

0: डॉक्टर की सलाह लें और जरूरी स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। शरीर में कोई असामान्य बदलाव दिखाई दे तो उसे केवल उम्र का असर समझकर नजरअंदाज नहीं करें। बहनों, हमारी उम्र में चाहे जितनी भी बढ़ जाए, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं और हमारी खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। अंत में बहनों, बस इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि परिवार की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन परिवार के साथ खुद की चिंता करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही अपने परिवार और समाज को स्वस्थ और मजबूत बना सकती है। बहनों, वैसे तो हमारे सारे शरीर के अंगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो दिन रात बिना रुके हमें जीवन देता है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ रखना और हृदय रोगों से बचाव करना बेहद जरूरी है। आइए इस पर चिकित्सीय सलाह जानने के लिए सुनते हैं ये खास बातचीत डॉक्टर राहुल सिंह जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में, और इनसे बात कर रहे हैं सचिन कुमार वर्मा जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वस्थ शरीर के लिए हृदय का स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। हमारा हृदय दिन रात बिना रुके काम करता है और शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त पहुंचाता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित दिनचर्या, खान पान में लापरवाही, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें, खान पान का किस प्रकार ध्यान रखें और हृदय रोगों से बचाव के लिए किन बातों को अपनाएं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राहुल सिंह। आप मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आकाशवाणी ओबरा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर।
2: धन्यवाद।
1: तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है हमारी जीवन शैली सक्रिय और संतुलित हो। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें मीडियम गति का, और चलने फिरने की आदत बनाएं। अगर आप कोई बैठ कर काम करने वाला हो तो उसमें हर आधे घंटे 45 मिनट में थोड़ा एक दो मिनट के लिए खड़े होकर चलने फिरने का कोशिश करें, उसमें फिर से आके बैठ के काम करें अपना। मतलब कभी भी 45 मिनट से ज्यादा लगातार एक ही जगह पे न बैठें। और दूसरा है, हमारे चलने फिरने से जो है हमारे रक्त कोशिकाओं को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तीसरा, किसी भी प्रकार का, जैसे आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं या किसी और नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल रोकने की जरूरत है, क्योंकि इससे हृदय की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो रक्त कोशिकाएं रहती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो जमा होता है, जिससे कि हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमें 45 मिनट लगभग
2: जी
1: वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए।
2: हाँ।
1: लोगों में ये होता है कि सुबह ही टहलने का टाइम
2: नहीं
1: होता है।
2: जब भी आपको मिले टाइम आप टहल सकते हैं। ऑफिस के काम में है तो ऑफिस में कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: शाम को भी टहल सकते हैं। अगर आप कहीं बड़े शहरों में है जहां आपके पास जगह ही नहीं है तो आप अपने टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर टहल सकते हैं। अगर आपके पास पार्क है, ये सब है, तो आप बिना चप्पल के टहलना है नंगे पांव से, लेकिन तो ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको नंगे पांव नहीं चलना है, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो वो मतलब बदल सकता है, लेकिन सबको टहलना चाहिए। ये है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली को संयमित और सक्रिय रखें।
1: बिल्कुल।
2: संयमित का मतलब है कि हम कोई भी चीज, जैसे कोई नशा कर रहे हो, इन सब चीजों से दूर रहें, और सक्रिय का मतलब है कि हम डेली अपने शरीर से ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारे शरीर से पसीना जरूर निकले। आप सवेरे टहल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि केवल सवेरे टहलेंगे तभी बेनिफिट आएगा। आप शाम को टहल सकते हैं, आपको कभी टाइम नहीं मिल रहा है, आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के टाइम में भी है, आपको कॉरिडोर है, आपके यहाँ गार्डन है, तो कभी भी टहल सकते हैं।
1: बिल्कुल। मतलब हमें कुछ न कुछ एक्सरसाइज या सक्रिय कि पसीना
2: आना चाहिए, उसमें
1: कुछ न कुछ मदद मिलेगी स्वस्थ रखने के लिए शरीर को और हृदय को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, खान पान का हृदय के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है और किन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल या सीमित करना चाहिए?

0: हमारे हिसाब से जो सरसों का तेल, जो भी आपके आसपास के एरिया में जो भी तेल उग रहा है उसका सेवन करना चाहिए। रिफाइंड तो ऑलरेडी वो प्रोसेस्ड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। उसके जो नेचर्स होता है वो तेल का पूरा चेंज ही हो जाता है। जो हमारे पास नेचुरल तेल है, सरसों का तेल बेस्ट है कि वो अगर हम लोग घर के आसपास अपने से खुद से सरसों को, मतलब जो हमारे पास उगता है उसको पेरवा लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा मार्केट से खरीदने के बजाय। तो जो भी हमारे पास सरसों का तेल हो या तीसी का तेल हो या और कोई जो मूंगफली का तेल या कोई भी जो आपके आसपास तेल उग रहा है तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके
1: उसका
0: लिए,
1: सेवन करें तो
0: सेवन
1: ज्यादा
0: करना
1: अच्छा है।
0: चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हृदय से ही संबंधित जो मुख्य बीमारियां हैं जिनसे लगभग हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित होता है, तो ये उच्च रक्तचाप, मधुमेह और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय को किस तरह प्रभावित करते हैं?
0: ये सब हमारी जो बीमारियां, इनको हम लोग बड़े एक ब्रॉड टर्म में जो क्लासिफाई करते हैं, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, आपस
1: एक
0: में
1: व्यक्ति से दूसरे
0: दूसरे
1: व्यक्ति
0: में
1: में नहीं
0: नहीं फैलते।
1: फैलता है।
0: जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या और कोई डायरिया हो गया, वो एक दूसरे से फैलते हैं, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, हाइपरटेंशन बोलते हैं, मधुमेह जिसको कि हम लोग शुगर या डायबिटीज बोलते हैं, और कुछ प्रकार के जो कैंसर भी होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। उच्च रक्तचाप जिसको कि हम हाइपरटेंशन या बीपी बोलते हैं, डायबिटीज जिसको कि हम शुगर या मधुमेह बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है वो हमारे शरीर में बहुत हानिकारक है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे हृदय को भी इफेक्ट करता है, किडनी को भी इफेक्ट करता है, आइज को भी इफेक्ट करता है सर। तो उस पे क्या, अधिक प्रेशर की वजह से वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो पतली पतली जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनको डैमेज करता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो वो एक के ऊपर एक, जैसे कहीं भी ब्लड वेसल्स के अंदर चोट लगा तो उस पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। तो डिपॉजिट होने से क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसके वजह से आगे के पार्ट में ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमको की दिक्कत होती है।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग सेवन तो करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं किस हद तक सेवन करना है जो खाद्य पदार्थ जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित है
0: जी
1: तो हृदय रोग के शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वो व्यक्ति पहचान सके कि हमारे हार्ट में कुछ दिक्कत हो
0: जैसे
1: रही है?
0: किसी को सीने में दर्द हो रहा है, पर चलने फिरने पे पसीना हो रहा है, या बैठे बैठे पसीना हो रहा है, या आपका सांस फूलने लग रहा है बैठे बैठे, या फिर आप 100-150 मीटर चल रहे हो तब आपका सांस फूलने लगा, पसीना होने लगा, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, थकावट महसूस हो रहा है, या अचानक से आप रात को सो रहे हैं और नींद खुल जा रहा है और उसके बाद आपको सांस फूलने लग रहा है, तो ये सब शुरुआती हृदय रोग के लक्षण हैं जो कि आपको आगे जाके अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किए तो परेशानी के कारण बढ़ सकते हैं। और एक होता है जिसमें कि हम लोग हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अचानक से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होगा चेस्ट में, अचानक से पसीना आएगा, सांस फूलने लगेगा, एकदम सडन होगा ये सब,
1: तो उसमें तुरंत
0: उसमें
1: डॉक्टर
0: तुरंत
1: से
0: डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हृदय रोग से ग्रसित जब कोई भी व्यक्ति होता है तो नो डाउट इसके इलाज में काफी पैसे लगते हैं, तो क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना है जिसमें हमें हृदय से संबंधित इलाज के लिए सहायता मिल सके?
0: जी, आजकल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि प्रोग्राम का नाम है हृदय सेतु। जैसे आजकल आपके जो भी पास का अस्पताल होगा, पीएचसी होगा, सीएचसी होगा, या कोई मेडिकल कॉलेज है, या कोई भी सरकारी अस्पताल है, वहां पे ये व्यवस्था होगी ईसीजी के लिए। जैसे भी किसी को भी हृदय का जो बीमारी पहचाना है उसमें हमको बहुत
1: सबसे
0: बेसिक चीज है कि हमको ईसीजी चाहिए, वो कन्फर्म होगा ही ईसीजी से, किसी को दिल का दौरा पड़ा है कि नहीं या इनको दिल की बीमारी है कि नहीं, तो वो सुविधा आजकल आपके नजदीकी जो भी सेंटर होगा, प्राथमिक हेल्थ केयर जिसको हम लोग की प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी बोलते हैं, वहां पे भी आजकल ये सुविधा है। आप वहां जाओगे तो वहां पे ईसीजी होगा और ईसीजी को फिर पढ़ने के लिए भी व्यवस्था है, उसको पढ़ के तुरंत अगर होगा तो आपका 5-10 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा कि आपको दिल का दौरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो वहां पे जो हम लोग के पास एक टेनेक्टिव प्लेज करके दवाई होती है जो कॉस्टली है, 40 से 50 हजार की आती है, आज की डेट में ये सरकार के तरफ से सभी मरीजों के लिए निःशुल्क है और हर जगह उपलब्ध है ये। 12 घंटे के अंदर वो दवाई लग जाती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हृदय हो जाएगा उसका, और फिर इलाज के लिए आपको लंबा टाइम मिल जाएगा, फिर आप अच्छे से इलाज करा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं

0: हूं, अगर ऐसे कंडीशंस ना चाहते हुए भी अगर परिवार में आए तो
1: अगर दिल के मतलब अगर कोई दर्द का बोल रहा है तो उसकी हम लोग
0: अवॉइड ना करें,
1: नजरअंदाज करते हैं कि ये गैस होगा या कुछ होगा, ऐसे ही होगा। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको कि रात को 12 बजे से दर्द होता रहता है, तो वो रात भर अवॉइड करते हैं कि हम सवेरे जाएंगे, सवेरे दिखाएंगे। तो इसमें हमारा जो विंडो पीरियड है, जो हम आपको टेनेक्टिव प्लेज लगाने के लिए 12 घंटे का बोले हैं, वो विंडो पीरियड खत्म हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो ऐसे लोग जरूर जाएं पास के अस्पताल में और वहां जरूर वहां डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और सहायता मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन हृदय को स्वस्थ रखने में किस प्रकार मदद करते हैं और सामान्य व्यक्ति को कितनी शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए?
1: नियमित व्यायाम हम सबको करना चाहिए। सबका लिमिट अलग अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। व्यायाम का हृदय पे या पूरे शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसको करना चाहिए। तनाव भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, या कुछ हद तक कैंसर और जो मानसिक बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, ये सब के लिए। तो तनाव प्रबंधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपने आप को बिजी रखना है, दूसरा आपको योगा, एक्सरसाइज ये सब करना चाहिए और वजन को नियंत्रित करना चाहिए।
0: जो डॉक्टर की सलाह है उस रेंज तक रखनी चाहिए अपने वजन को, अपने लंबाई के अनुसार।
1: जी, लंबाई के अनुसार 6 से 8 घंटे का हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर नींद होना चाहिए, वो नींद प्रबंधन बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हमारे श्रोताओं को। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आपका संदेश श्रोताओं के लिए।
1: हृदय एक हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके लिए आज से अभी से हम लोग को अपना तनाव प्रबंधन करना है, पर्याप्त नींद लेना है, योगा एक्सरसाइज जितना आपसे संभव है उसको करने का कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए आगे बढ़ना है, उसमें आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। नियमित आपके घर में कोई 45 से ऊपर का है तो उसका ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब नियमित चेक कराना चाहिए, और जो लोग दवाइयां ले रहे हैं इन सब बीमारियों का, उनका तो आपको डॉक्टर से फॉलो अप करते ही रहना चाहिए। लेकिन जो कोई बीमार नहीं है, जिसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी आपको अपना वर्ष में एक बार जरूर बीपी, शुगर ये सब चेक कराना चाहिए, और युवाओं के लिए खासकर कि नशे से दूर रहना है।
0: बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हमें यह समझने का अवसर मिला कि हृदय को स्वस्थ रखना केवल बीमारी से बचना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच हृदय के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक हो सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने श्रोताओं को उपयोगी जानकारी दी और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सावधानियों एवं जीवन शैली में सुधार के बारे में विस्तार से बताया। इसके लिए आकाशवाणी ओबरा की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक why आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बहनों, अभी आपने सुना हृदय रोग से बचाव पर खास भेंटवार्ता, और इससे पहले हम बात कर रहे थे महिलाओं की बढ़ती उम्र और उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, और जाना कुछ खान पान से जुड़ी बातों को भी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें भोजन में मोटे अनाज का भी सेवन करना चाहिए। जी हाँ, अब हमारा विषय यही है, पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज। बहनों, आपने बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का जैसे अनाजों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हमारे घरों में पहले इन अनाजों को खूब

इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल हम में से कई लोग इन्हें छोड़कर दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, जबकि मोटे अनाज हमारे भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाने में मदद करते हैं। बहनों, इनका स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। मोटे अनाज में फाइबर, विटामिन और कई ज़रूरी खनिज पाए जाते हैं। ये पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। बहनों, इसीलिए मोटे अनाज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, साथ ही अपने परिवार और बच्चों को भी ज़रूर दें। आप बाजरे, ज्वार और रागी की रोटी बनाकर खाने में शामिल कर सकती हैं, और अगर रोटी नहीं अच्छी लगे तो चीला, लड्डू, दलिया या फिर डोसा बनाकर बच्चों के साथ साथ खुद भी खा सकती हैं। इससे भोजन में वैरायटी भी आएगी और साथ ही बच्चों को नए स्वाद भी मिलेंगे। तो खूब पौष्टिक खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ बहनों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: मेरी प्यारी बहनों, तो गीत से पहले हमने पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज के बारे में जाना और समझा। सही खानपान जहां हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, वहीं किसी आपात स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायक मिलना भी बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एम्बुलेंस सेवा की, जो आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाने और उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है। तो बहनों, जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस सेवा की मदद ले और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी संदेश के साथ मुझे अपनी रेडियो सखी सूर्या को दीजिए जाने की अनुमति। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़, ढेर बरखा, ओला गिरले या चक्रवात के नाते प्रभावित प्रदेश के किसानन के आज गोरखपुर से डीबीटी के जरिए 493 करोड़ रुपया का मुआवजा राशि भेजले। राज्य आपदा मोचक निधि से किसानन के खाता में धनराशि भेजत। मुख्यमंत्री कहलन कि सरकार फसल, मकान आ पशुहानि पर आपदा राहत कोष से किसानन के मुआवजा दे रही हो।
1: अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रदेश ने पिछले एक सप्ताह पूर्व काफी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी जगह जन और पशु की भी हानि हुई है। आज डबल इंजन की सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को उनकी फसल क्षति, मकान क्षति, पशुधन की क्षति का ये आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है। इस क्रम में आज हम देश के 9,18,091 कृषकों को लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके अकाउंट में भेज रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री मिशन शक्ति के छठवां फेरा के तहत आज गोरखपुर जिला में जागरूकता रैली 2026 के हरियर झंडी दिखा के रवाना कैले। वहां के गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आज गोरखपुर में आयोजित शिक्षक सम्मेलनों के संबोधित कैले। देश का मुख्य न्यायाधीश न्याय

0: मूर्ति सूर्यकांत नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वां स्थापना दिवस के मौका पर आज मीडिया से बतियावत कहने की सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा सबके खातिर खुलल बा।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: शारदीय नवरात्र के दुसरका दिन ने आज माय दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजा अर्चना कल जा रहा हो। ए मौका पर प्रदेश भर के देवी मंदिरन में भी नहीं ऐसे श्रद्धालुओं को लमहर कतार लागल बा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर, बलरामपुर जिला के देवी पाटन शक्तिपीठ, वाराणसी के दुर्गा कुंड के सतही कई गो देवी मंदिरन, महाराजगंज के लेहड़ा माता मंदिर, गोरखपुर के तरकुल्हा देवी या बुढ़िया माई के मंदिर में दर्शन पूजन बदे श्रद्धालुओं को भारी भीड़ बा। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि बतौलें कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से काशी की अधिष्ठात्री देवी माँ विशालाक्षी बदे आज श्रृंगार को समान अर्पित कर गई। वहीं जौनपुर के माता शीतला चौकिया धामों में श्रद्धालु लाइन लगा के माता का आराधना कर रहा हम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर ले हम है। जनसेवा से देश सेवा ए जतरा का मूल मंत्र रहल हवे। सेवा सुशासन के यही नजरिया के साथे सरकार भारत के बरिस 2047 ले विकसित राष्ट्र बनौले का लक्ष्य हासिल करे बदे लगातार कार्य कर रही हो। आज के खास श्रृंखला में हमने के बात करब माई गोव प्लेटफॉर्म के बारे में।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार सज्जू राज्य न केंद्र शासित प्रदेशन से क्लिनिकल प्रतिष्ठानन में दिहल जाए वाला सेवा आ सुविधा का दर प्रमुखता से प्रदर्शित करे के कहले हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, समय है सूचना और कार्यक्रम विवरण का।
1: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक।

0: गणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
1: और श्रोताओं, आप सूचना खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात पुरुष का शव 25 अगस्त 2026 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त स्थान है ग्राम इंटेक वेल डैम डोढ़र बीजपुर सोनभद्र, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास थी। खुशबू राव पुत्री धनुर्धर प्रसाद, जो बिल्ली मारकुंडी टोला खरेटिया ओबरा जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं और 2 सितंबर 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार से है। उम्र करीबन 13 वर्ष, लंबाई 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल और बदन एक गहरा है। इनके लोगों के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको याद दिला दें, अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 6:10 से आप सुनेंगे ग्राम जगत कार्यक्रम। आपकी ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का समय रहेगा रात्रि 10 बजे का। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 से। फिल्म गीतों के ही कार्यक्रम में सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर, शाम 6:50 पर और रात्रि 9:30 से। भूले बिसरे गीत फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन
1: के
0: के राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: भैया
1: जी।
0: आपो
1: हाँ
0: के राम राम। और बतावे घर परिवार गुरु चौवा।
1: देखा, घर परिवार तो सब खुशहाले बा। काहे कि देखा, जब जब सब मौसम बदला ला ना, तो वो हिसाबे से हम लोगन के भी बदलाव जरूरी बा। काहे कि गांव गिराव में हम लोग रहिला, हम लोगन के तरह तरह के काम देखे के पड़ेला। जिसे पहले तो देखा, अब मौसम बदलत बा, अब बरसात से जाड़ा आवत बा, तो हम लोगन के सबसे पहले अपन स्वास्थ्य के देखब जरूरी होला। काहे कि जब मौसम बदलेला तो अपन स्वास्थ्य सही रखे
0: ओकर
1: खातिर।
0: असर पड़ेला।
1: हाँ
0: कहे का मतलब कि हमार खान पान हमार दिनचर्या सब बढ़िया रहे। मगर ये बतावा भगेलू भैया,
1: का हो?
0: मेला रामलीला चलत बा। अब ऐसने में अगर रामलीला देखे जाइल जाई तो हमार दिनचर्या प्रभावित हुई,
1: काहे नहीं?
0: और जब मेला देखे जा तब तो वहाँ जौन गुड़िया जलेबी चटहिया जलेबी और रंग बिरंगा चटपटा चीज मिलत बा उहो देखा मन हो जाला खाए के।
1: और ओकरे साथे साथे खाए पिए के बात तो जौन बा हुई भी थे बा, लेकिन हम कहते ही ना कि देखा, हम लोगन के अब दिन में तो देखा तेज धूप बा, और राते में देखा जाड़ा पड़त
0: ठंडा
1: बा, और ओकरे साथे ओस भी गिरत बा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: ये से
0: कहला।
1: हम लोगन के बचले के जरूरत बा।
0: और बचले खातिर देखा हम लोगन का थोड़ा सा कुछ चीज

0: के समझौता करे के पड़ी। कहल जाला ना कि कुछ पावे के बाद तो कुछ खोए
1: के
0: पड़ी। तो देखा अगर हम जो उनको हथ रही जो हम लोगन के लगत बा कहे कि देखा मेला शुरू हो चुकल बा कई दिन से जिद्यात रहलन लैकन बच्चन कि रामलीला देखे चलल जाए। अब दू तीन दिन चला गई अब समझ नींद ना पूरा भइल सवेरे देर तक उठल लैकन भी दिन भर ढलमलात हवन और सब ढलमलात बा। तो हमार कहे के मतलब ये बा कि जैसन आप चेतावलन कि मौसम में हमके अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देवे के जरूरत बा और ओकरे संगे संगे देखा जौनी मौसम बा ना जैसे बरसात खत्म भइल मगर जैसे जैसे ठंडा शाम के बढ़त बा ना वैसे वैसे मच्छर के आतंक बढ़त बा। और यही मौसम में अगर हम लोगन थोड़ा सा चेतल न जाइए तो समझे ये मौसम ही कहाला कि डेंगू मलेरिया
1: चिकनगुनिया
0: ये कुल के समय बा। तो हम लोगन के ना ये सब चीज के ध्यान रखे बा और ये सब चीज खाती बहुत जरूरी बा कि हम बिल्कुल सही कहला हा कि उचित खान पान स्वच्छ वातावरण नींद के साथ साथ तनाव मुक्त जीवन शैली रखे के जरूरत बा। तो देखा भैया आज ना यही से जुड़ल कुछ चर्चा खातिर हम लोगन के बीच में भोला भैया बुलैले हमन एक शिक्षक हमन रामचंद्र भारती
1: जौन के दुद्धि ब्लॉक के कोलिन डुबा गांव के हवन।
0: अच्छा अच्छा तो उनसे कुछ जानकारी सुनल जाए कि कैसे स्वच्छता मानव जीवन के मुख्य अंग कहल जाला। सुनल जाए
2: श्रोताओं साफ सफाई की विशेषता इतनी बताई जाती है और लगभग सबको जानने की भी जरूरत है कि एक स्वच्छ व्यक्ति और साफ सुथरा स्थान कितना रमणीय लगता है। वहाँ हर कोई जो है कि अपना स्थान कुछ देर तक के लिए व्यतीत करने के लिए चयन करता है। यहाँ तक भी कि जहाँ बिल्कुल साफ सफाई है वहाँ लोग यह भी देखता है कि जूता चप्पल भी बाहर निकाल करके कहीं गंदगी न चल जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साफ कितना रख सकते हैं, स्वयं कितने साफ रह सकते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि जो है कि शरीर की भी सफाई नहीं कर पाते हैं, पर दिन स्नान भी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें उनसे लोग कैसा महसूस करते हैं और जो बिल्कुल साफ सुथरा लोग रहते हैं उनसे कैसा महसूस करते हैं। एक बिल्कुल साफ सुथरा यदि बच्चा है तो उसको सारे लोग गोदी ले लेता है, लेकिन थोड़ा गंदगी से लिप्त यदि कोई बच्चा है उससे दूरी बनाते हैं। तमाम चीज़ें हैं और स्वच्छता के का कुछ जो है कि महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना जिम्मेदारीपूर्ण ये कार्य करनी चाहिए कि अपने घर का और गांव का से लगाया जो है कि जिला जवार होते हुए प्रदेश देश तक को एक रमणीय बनाया जा सके। इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धि ब्लॉक के कोल्हिन डुबा से श्री रामचंद्र भारती जी हैं, आप पेशे से शिक्षक भी हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपका क्या सुझाव है स्वच्छता के बारे में आपसे ही बातचीत होगी। राजकुमार भारती जी आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वच्छता कितना आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके बारे में कुछ थोड़ा आप बताएं।
3: धन्यवाद। व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति के
2: जी
3: सफाई का बहुत ज्यादा महत्व है। जब आदमी स्वच्छ नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं रहेगी तो हमेशा उसके यहाँ बीमारी का घर बना रहेगा। इसलिए साहब हम आपसे कहना चाहेंगे और अपने सभी बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से कि साफ सफाई जो है, जैसे आदमी घर की सफाई करे, घर की सफाई करने के बाद जिस कपड़े की सफाई हो गई, अपने शरीर पर कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे कपड़े हों और घर की सफाई हो, घर की सफाई के साथ प्रतिदिन व्यक्ति स्नान करे, स्नान करके अपने शरीर की सफाई करें, ये सफाई करने से आधा बीमारी अपने आप भैया भग जाला।
2: जी जी जी, बीमारी आएगी ही नहीं,
3: आएगी ही नहीं बीमारी।
2: बिल्कुल,
3: कहा गया है कि आरोग्य में कि सबसे पहले बीमारी आने से पहले ही उसका हम इलाज कर लें, अर्थात सफाई, साफ सफाई कर लें।
2: बिल्कुल।
3: तो जब सफाई हमारे यहाँ रहेगा, भोजन बहुत लोग जो है साफ सुथरा नहीं रखते हैं, पानी भी साफ नहीं होता है, पानी को गर्म करके फिर उसमें से जो गंदगी होता है उसको दूर किया जा सकता है। भोजन को ढक करके रखना चाहिए, भोजन पे भी मक्खियां बैठ जाती हैं तो उससे भी जो है जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया जो होता है भैया वो पे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो आदमी खा जाता है, पेट में चला जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति अपने चप्पल जूता घर में ले जाते हैं उससे भी गंदगी घर के अंदर चला जाता है।
2: बाहर कहाँ
3: तो साफ सफाई, हाँ कहाँ कहाँ कैसे आया, आदमी आते हैं तो हाथ बिना, जैसे बच्चे हैं कहीं से फल लाए चाहे कुछ लाए मार्केट

0: से कोई सामान लाए, तो जैसे मान लीजिए मिठाई है, खुले की मिठाई है, तो खुले की मिठाई भी नहीं खरीदना चाहिए।
1: जी।
0: और अगर मान लीजिए कोई भी फल लाते हैं, बच्चे दौड़ करके आ जाते हैं, छीन करके खाना शुरू करने, मांग के खाना शुरू करने लगते, उससे पहले उसको धो लेना चाहिए, उस पर
1: बिल्कुल
0: कौन
1: बिल्कुल।
0: से बैक्टीरिया बैठा है, वो पेट के अंदर बच्चे का चला जाएगा। इसलिए ये जो है सफाई के लिए, जैसे फलों को भी धो करके हमको खिलाना चाहिए,
1: जी।
0: सब्जियों को भी धो करके काटना चाहिए, सफाई जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में सर सफाई के साथ साथ ये नहीं कि केवल हम अपने घर में के सफाई करें और अपने शरीर के, अपने कपड़े के, अपने आसपास पड़ोस में भी गंदगी होता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: नाली होता है, नाली जैसे जम गया पानी, उसमें मच्छर उत्पन्न होंगे, सफाई नहीं रहेगा तो।
1: जी।
0: और चापाकल हैंडपम्प भैया रहता है, उसके सामने भी तो जो है बहुत लोग गंदगी करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हैंडपम्प के किनारे जो है सोखता गड्ढा बना देना चाहिए ताकि पानी सूखे, उसमें मच्छर ना उत्पन्न हो। ये सब मच्छर जब उत्पन्न होंगे गंदगी से, चाहे गंदगी जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु होंगे, वो सब व्यक्ति के लिए हानिकारक हैं, व्यक्ति के जीवन में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं।
1: बिल्कुल
0: इसलिए
1: बिल्कुल।
0: जिंदगी में आदमी के सफाई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो है आदमी जिंदगी को अपना महत्व समझता
1: महत्व
0: है।
1: समझता, भोजन ग्रहण
0: हाँ तो
1: करने को सोचता
0: हाँ
1: है, तो
0: सफाई,
1: निश्चित रूप से इसमें, चूंकि इस समय कई जगह सुनने को मिलता है कि अमुक स्थान पर जैसे चल रहा था व्यक्ति और उसमें सर्प छुप करके था और डस लिया और यह लीला को त्याग कर
0: भैया
1: दिया।
0: ये तो बहुत बड़ी समस्या है।
1: हैं।
0: घरों के अगल बगल में घास फूस लोगों के जमे रहते हैं ग्रामीण अंचल में,
1: जी।
0: तो ग्रामीण अंचल में घास फूस रहते हैं, तो उसकी सफाई अगर नहीं करेंगे तो उसमें तो छुप करके झाड़ी में रहेगा ही।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: जिस रास्ते से चलते हैं, रास्ते की सफाई, घर द्वार में घास इत्यादि है मान लीजिए, तो घास वगैरह की सफाई जो है वो साफ सुथरा रहने से भी अपने आप में भी तो बढ़िया लगता है, आदमी को देखने में भी अच्छा लगता है।
1: अच्छा, कभी इसमें देखते हैं कि जहाँ ज्ञान बंट रहा होता है
0: जी
1: वहाँ लोग उसको नहीं सुनना चाहते हैं, अलग चल जाते हैं। जब जिसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं
0: जी
1: और फिर प्रत्येक साल में या पखवाड़ा भी, या जो है
0: स्वच्छता
1: कि
0: पकौड़ा,
1: स्वच्छता पखवाड़ा चलता
0: जी
1: है या तमाम जैसे चलते हैं,
0: जी जी
1: उसमें प्रतिभाग ना करने वालों को देखेंगे कि ज़्यादा जो है कि गंदगी रहेगा या जो है कि समझ नहीं रहती है, तो
0: जी
1: ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: ऐसे जितने व्यक्ति हमारे जो श्रोता बंधु हैं और माताएं बहनें भाई जितने भी हैं, इन सबसे हम कहना चाहेंगे कि जागरूक जब तक आप नहीं रहेंगे, किसी चीज़
1: जी
0: को समझेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो परेशानी से आप ग्रसित रहेंगे,
1: बिल्कुल
0: परेशानी
1: बिल्कुल।
0: आपका नहीं हटेगा।
1: अनेक
0: इसीलिए
1: परेशानी स्वयं बुलाते
0: हाँ
1: हैं।
0: स्वयं परेशानी बुलाएंगे आप
1: अज्ञानता के कारण।
0: अज्ञानता के कारण। इसलिए जो है आदमी को इस सब के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है और सब बातों को सुनना जरूरी है। जब तक
1: जी।
0: सुनेंगे नहीं तो जीवन में सीखेंगे नहीं।
1: अब ये चूंकि गांधी जी का बात को लेकर के लोग ज़्यादा उत्साहित भी रहते हैं और उन्हीं के क्रम में जो है कि सब साफ सफाई से लगाया, स्वयं अपने से काम करिए, आगे बढ़िए, शिल्प कला,
0: जी
1: पुस्तक कला, तमाम चीज़ें ऐसा, मतलब अभी
0: हस्तशिल्प, हाँ हाथ
1: हस्तशिल्प ये
0: से
1: चलाया
0: बनाने के
1: जाता
0: लिए
1: है,
0: कोई,
1: तो उनका जो विचार था
0: जी
1: वो, उससे आप कितना सहमत हैं जो है कि गांधी
0: देखिए
1: जी के?
0: गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता इसलिए बने कि वो देश के लिए कुछ किए, तो हम लोगों को भी अपने देश के लिए सब नागरिक के कर्तव्य है कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। इसलिए गांधी जी को देखिए, उनका जन्मदिन भी स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब तक साफ सफाई नहीं रहेगा, स्वच्छ भारत नहीं रहेगा, तब तक स्वस्थ भारत कैसे
1: नहीं
0: रहेगा?
1: हो सकता। बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छ स्वच्छता आप अपनाएंगे, स्वच्छता व्यक्ति तो सुनता जरूर है लेकिन अपने जीवन में उतारता नहीं। कितने लोग देखेंगे कि प्लास्टिक जो है रोड पर ही फेंक देंगे, प्लास्टिक केले के छिलके रोड पर भी फेंक देंगे,
1: जी।
0: और भी जो कागज है उसको फेंक देंगे, उसको डस्टबिन जगह जगह
1: हाँ
0: रखा
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ
0: कूड़ादान है उस जगह रखना चाहिए। स्वयं व्यक्ति अपना जिम्मेदारी जब ले लेंगे, अब हर
1: जी।
0: आदमी जब अपने अपनी जिम्मेदारी ले लेगा, अपना जो है वो इंसल्ट नहीं महसूस करेगा, तो स्वच्छ भारत हो जाएगा। और जो भी आदमी आगे बढ़ा, महान बना, वो अपने जीवन को, अपने जीवन में नम्रता लाया है, नम्रता
1: जी
0: रखा है।
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हर आदमी को विनम्र स्वभाव के साथ जो है गंदगी को भी जो है दूर करने का प्रयास करना चाहिए, साफ करना चाहिए। हर चाक चौराहा गली है, और जो है क्या कहते हैं, किसी भी स्थान पर, स्कूल से लेकर के, मंदिर से लेकर के, जहाँ भी हो, जब तक हम स्वच्छ अपना जो है उद्देश्य नहीं रखेंगे स्वच्छता के लिए कि स्वच्छ
1: जी।
0: रहे, स्वच्छ बने, तब तक
1: तब
0: जो है
1: तक संभव
0: हम
1: नहीं हो
0: संभव
1: पाएगा।
0: नहीं हो पाएगा। और इस बात को तो हम अपने भाइयों बहनों माताओं से श्रोता बंधुओं से कहेंगे कि अपने जीवन में एक बार स्वच्छता उतार करके देखेंगे ना तो उनको खुद महसूस होगा।

0: महसूस होने लगेगा कि हाँ सही बात है, कपड़े गंदा आप पहनना नहीं पसंद करेंगे। क्यों नहीं पहनना पसंद करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: तो आप अगर चाक चौराहा गली है उस पर तो आप ही तो जा रहे हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: अगर वो भी साफ सुथरा नहीं है तो उस जगह आप रहना पसंद नहीं करेंगे। भैया हम आपके कहते कि अगर मान लीजिए साफ सफाई शरीर स्वस्थ ना रहे,
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: तो दिमाग बुद्धि कैसे स्वस्थ,
1: दिमाग बुद्धि कैसे काम करे। बिल्कुल, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास,
0: स्वस्थ शरीर रहे के खातिर जो है कि आदमी के स्वच्छता अपनावे के पड़ी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि रामचंद्र जी रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं
0: जी,
1: श्रोता लोग, तो चलते चलाते उन लोग से क्या कुछ अवसर रखना चाहेंगे?
0: चलते चलाते हम भाई लोगन से, माता बहन लोगन से यह सरेखल चाहत थी कि अपन जीवन में सफाई अपनाते हुए अपने आसपास पड़ोस में चाक चौराहा गली घर द्वार सब कुछ के सफाई, घास फूस इत्यादि दूरा दरवाजा के सफाई करते हुए और भारत के विकास में अपन सहयोग प्रदान करें, ताकि जो है यो हमारा देश जो है भारत देश विकसित देश के श्रेणी में आवे में देर न लगावे और हम सब विकसित भारत के नागरिक कहाएं।
1: तो श्रोताओं देखिए, अपना यदि कोई भी व्यक्ति उत्थान चाहता है स्वच्छता को अपना करके और वो एक समान जीवन जी सकता है और आगे बढ़ सकता है, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकता है, अपने बच्चों को साफ सुथरा रख करके उनको भी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे रामचंद्र भारती जी, आप पेशे से शिक्षक भी हैं, कोलिंडुगा के निवासी जो दुधि ब्लॉक अंतर्गत आता है, आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: तो शुरू
5: बघेलू भैया।
6: हाँ जलेबी भोजी,
5: कितना अच्छा बात बतावला रामचंद्र भैया कि जब स्वच्छ वातावरण रही, लोग स्वस्थ रही है, तबे तो देश स्वस्थ रही।
6: काहे नहीं, तो यही से न कहल गइल बा कि देखा जहाँ भी रहे के बा वहाँ देखा एकदम साफ सफाई रखले के जरूरत बा। और देखा एक सीख इहो देलन कि जैसे हम लोग कपड़ा पहनत है तो कपड़ा भी अगर हम लोगन के साफ नहीं रही तो हम लोग कपड़ा भी नहीं पहन सकीला। और वही तरीके से चप्पल जूता के भी बात, मतलब कोनो तरह से को
5: छोटा छोटा चीज पर ध्यान दिहल गेल, चर्चा भइल। और बिल्कुल हर व्यक्ति के अपने परिवार में प्रतिदिन के दिनचर्या में ये स्वच्छता के अपन जीवन के मुख्य अंग बनावे के चाहिए। और चूंकि देखा हम लोगन है जा खेती गृहस्थी वाला आदमी, तो इतना कबू कबो घर में चप्पल पहन के तो आवा छोड़ा, हम लोग तो कभी कभी बिना चप्पले जूता के
6: खेते में चल
5: जाई ला जा, और देखा माटी गोड़ में लगले रही। और चला ये बात के ध्यान रखे के जरूरत बा। और अब देखा हम लोगन के यहाँ का कहल जाए, अब देखा रवि की तैयारी शुरू हो चुकल बा, तो ए बार का तहार योजना बा?
6: तो देखा इसमें सबसे पहले योजना तो हम लोगन के रहला ना कि अपन
5: माटी
6: जांच कराओ जरूरी है माटी के। अब जैसे कि हम लोगन के बुखार अगर लगल बा तो बिना जांच करौले अगर दवा खात है तो देखा सही के जगह बेकार हो जाला। तो वही तरीके से अपन माटी भी बा, माटी के जांच करावल बहुत जरूरी होला, काहे कि ओमे
5: उर्वरक प्रबंधन कैसे करल जाए।
6: हाँ, कि कौन चीज के कमी बा, कौन अधिकता बा, तो इससे पता चल जाला कि। और ओसे इहो होला कि एहमे हम लोग कौन फसल उगाई लगाई।
5: बिल्कुल सही बात बा कि हमार माटी कौने फसल खातिर उपयुक्त बा, और अगर हमार मनसा कौनो विशेष फसल खातिर बा तो ओकरे खातिर हमार माटी में कौन तत्व के जरूरत बा, कैसे वह है कि कैसे ओमे खाद पानी ऐसन करल जाए कि बढ़िया फसल मिले। तो देखा एहू से जुड़ल चर्चा खातिर हमारे कृषि सखी है, नाम बा उनकर सुनीता देवी। सुन ले अब।
6: हाँ।
5: अब भोला भैया से उनकर भेंट मुलाकात हो गई। अब भोला भैया तो समझो अगर

0: भेंट भइल और अपने किसान भैया लोगन खातिर जानकारी न जुटावे तो ई तो देख भोला भैया के चिन्हानी नहीं बा। तब आज बात बत कही करत हमन भोला भैया अपन कृषि सखी सुनीता देवी से कि रवि में अच्छा उत्पादन लेने की तकनीक।
1: तो देखा ये तो जन ले जाए लेकिन हम लोग खेती बाड़ी करीला और हम लोगन के अपन एक नजरिया मौसम के तरफ भी लगाव जरूरी हो खेला। काहे कि देखा कहाँ कहाँ जगह पर आज भी बुनी बरखा हो रहल बा।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा।
1: ऐसने में हम लोगन के जौन तापमान बा न्यूनतम तापमान हो वो देखा 20 डिग्री सेल्सियस बा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस।
0: हाँ, तापमान में गिरावट हो गई। बहुत सही समय से तापमान और मौसम के जानकारी आप देलन हा। काहे कि फिर देखा हमार तो मनवा मेला रामलीला में लगल बा और वहां से लौटत समय ना मजे के सेहरावन जाता है। सेहरावन बनता आवत समय तो ठंडा लगत बा। तो सही गलत तापमान बतैला। अब अपन ओढ़ना ओढ़ना के व्यवस्था से जाल जाई। मगर हम तो कह कि ये बात बत कही भी सुनल जाए।
1: काहे नहीं
0: चला
1: बिना देर के लिए चला। रवि में अच्छा उत्पादन लेवे के का तकनीक बा तो सुनीता देवी जो कृषि सखी हवन इनसे सुनल जाए।
2: सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धि ब्लॉक के दिघुल गांव में ग्रामीण कृषक श्रीमती सुनीता देवी जी से मुलाकात हो रही है। आप खेती करने के बहुत ही नए नए तरीकों का प्रयोग करते हैं और साथ साथ जो है कि लोगों को प्रशिक्षित भी करने का काम करते हैं। गांव में आप एक अग्रणी महिला के रूप में भी जानी जाती हैं। खेती किसानी के बारे में आपसे ही बातचीत होगी, क्या कुछ जानकारी है और किन किन विधियों से आप खेती करती हैं? चूँकि धान का जो फसल यहाँ होता है उसका अब समापन की ओर ही है और जो मोटे अनाज हैं सावा कोदो मेड़ो मिझरी वाली बात चलती है, उसके साथ ज़्यादातर यहाँ मकई की खेती हुआ करता है। अब वो भी जो है कि अब टूट चुके हैं और उसके भी खेत की जुताई हो रही है। कुछ चौमास जो खेत थे उसका भी जुताई करके और कहीं चना बोने का भी अपना शुभारंभ हो रहा है और बहुत जगहों पर कुर्थी वगैरह की बुआई हो गई है। आगे क्या योजनाएं हैं इसके बारे में सुनीता देवी जी से बात होगी। सुनीता जी, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे फसल बोता है लोग लेकिन बहुत अंधाधुंध जोन बाकी वो रासायनिक खाद के प्रयोग करते हैं, रासायनिक दवा के प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों का कहना है कि खेत बीमार हो रहे हैं और अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने के भी फिराक में लोग रहते हैं। तो आप किन किन विधियों से खेती करने के तौर तरीका अपनाती हैं सुनीता जी?
3: जय आजीविका, मैं ग्राम दिघुल से सुनीता देवी कृषि सखी। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ मुख्य फसल धान गेहूँ है। तो धान का तो फसल अब अंत हो चुका है, इसमें कुछ दवा का छिड़काव हो रहा है। तो इसमें अधिकतर लोग रासायनिक दवा रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो रासायनिक के जगह पर हम लोग जैविक दवा का उपयोग करते हैं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैविक में कौन कौन से दवा आप लोग बनाने के या उपयोग करने?
3: देखिए भैया, हम लोग जैविक दवा निमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र, लोहास्त्र हो गया, मठास्त्र हो गया, यही अधिकतर हम लोग जैविक दवा से ही सब्जी उगाते हैं।
2: जी जी जी जी, तो ये जो है कि ये तो मान लीजिए ये कीटनाशक दवाएं हैं।
3: हाँ।
2: और खाद में भी जो है अभी कह रही थी कि रासायनिक खाद।
3: हाँ,
2: प्रयोग करते हैं।
3: हाँ।
2: तो उसके जगह पर कौन सा खाद प्रयोग करने का प्रयास करते हैं
3: भैया? हम लोग अधिकतर जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं। जैसे DAP यूरिया का बहुत कम उपयोग होता है। हम लोग जैविक खाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट हो गया
2: जी,
3: नाडेव खाद हो गया, हरी खाद, और जो सनई होता है।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
3: उसका भी मतलब बुआई कर देते हैं और उसका बुआई करके एक महीना 40 दिन 45 दिन के बाद उसका जोताई कर देते हैं। उससे
2: हमारी
3: हरी खाद का
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: काम हो जाता है।
2: अब चूंकि अब ये जो है कि आगे ये गर्मी के फसल की बात आ रही है जैसे कि ये गेहूं वगैरह।
3: हाँ, हमारे
2: तो
3: हाँ,
2: गेहूं के बुआई के लिए महत्वपूर्ण बातचीत करनी है आपसे कि ये कौन कौन से विधि अपनाएं और कैसे इसका बुआई और बीज शोधन सबसे महत्वपूर्ण बात।
3: हाँ,
2: तो कैसे करती हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग को, चूँकि उसी का बुआई करना है।
3: हाँ, उसी का फसल आ रहा है, गेहूँ का ही फसल बुआई करने का शुरुआत होने जा रहा है।
2: हाँ हाँ,
3: तो देखिए भैया, हमारे यहाँ अधिकतर लोग सामान्य विधि से गेहूं का बुआई करते हैं। उससे हमें बीज अधिक लगता है।
2: अच्छा अच्छा, अच्छा।
3: तो हम लोग श्री विधि से गेहूं लगाते हैं। उसमें एक

0: बिस्वा के लिए हम 500 ग्राम बीज लेते हैं,
1: अच्छा
0: एक बिस्वा के लिए हम 500 ग्राम बीज लेते हैं। फिर उसको उसके लिए 2 लीटर गर्म पानी लेते हैं, हल्का गर्म
1: गुनगुना
0: गुनगुना पानी लेते हैं। उसको फाइबर के बाल्टी में या मिट्टी के बर्तन में उस पानी को डाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके लिए फिर 100 ग्राम गुड़ लेते हैं, आधा केजी वर्मी कंपोस्ट खाद लेते हैं।
1: जी
0: इसके बाद फिर 100 ग्राम गौमूत्र लेते हैं, उसको बाल्टी में डाल देते हैं, फाइबर के बाल्टी में
1: फाइबर के
0: डालते हैं।
1: बाल्टी में
0: स्टील के बाल्टी में नहीं डालना है, और नहीं फिर मिट्टी के बर्तन में ही डालना है,
1: या तो फिर मिट्टी के बर्तन या फाइबर वाले में।
0: फाइबर वाला
1: जी
0: में। फिर उसको 12 घंटे पानी में गेहूं को डाल देते हैं,
1: अच्छा
0: पानी में 12 घंटा गेहूं भिगो देते हैं। फिर उसको सूती बोरी बोरिया पे
1: रख देंगे।
0: रख देंगे,
1: रख के ढक देंगे फिर।
0: रख के ढंग छायादार जगह पे रखना है। इसके बाद छायादार जगह पर रख देंगे, उसमें 24 से 48 घंटा में उसमें
1: अच्छा
0: अंकुरण आ जाएगा,
1: हाँ।
0: अंकुरण आ जाएगा। इसके बाद हमको 10 इंच की दूरी पे
1: अच्छा
0: रोपाई करना है गेहूं का।
1: एक एक ठीक मतलब
0: हाँ,
1: गिराएंगे
0: एक एक दो दो बीज गिराना लगाना है
1: लगाना
0: हमको।
1: है। अच्छा
0: हाँ,
1: गिराना नहीं है बल्कि
0: गिराना नहीं,
1: लगाना है।
0: लगाना है।
1: तो उसमें खेत के नमी लगभग कितना होना चाहिए?
0: खेत का नमी होना चाहिए, खेत अच्छी से मतलब भुरभुरा तैयार
1: भुरभुरा
0: होना,
1: रहना
0: हाँ तैयार
1: चाहिए।
0: होना चाहिए। इसके बाद उसको हम 10 इंच के दूरी पे लगाते हैं।
1: जी
0: ये हमारा श्री विधि।
1: अच्छा, तब 10 इंच की दूरी पर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे उसको फिर?
0: हाँ, फिर 10 से 15 दिन के बाद हमको कोड़ाई करना है,
1: अच्छा
0: गेहूं का कोड़ाई करना
1: तो
0: है।
1: पानी कब देंगे उसमें रोपाई के बाद?
0: रोपाई के बाद पानी, 15 दिन के बाद पानी देंगे।
1: अच्छा।
0: हाँ, पानी 15 दिन के बाद पानी देंगे,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: नमी बना रहे खेत। हमें ध्यान देना है कि खेत की हमारी नमी
1: तो कुंड में ही तो रोपाई करेंगे, कैसे करेंगे?
0: नहीं, कूड़,
1: ऐसे
0: हाँ रस्सी पे,
1: रस्सी पे
0: हाँ रस्सी के
1: मतलब
0: सहारे रोपाई
1: बिल्कुल
0: करना है।
1: बिल्कुल भुरभुरा जो है कि मिट्टी रहेगा, और लाइन से लाइन रस्सी करेंगे
0: हाँ, लाइन से लाइन रस्सी पे लगाना है,
1: और रस्सी से उसी जगह गाड़ देंगे ऐसे।
0: गाड़ देंगे रस्सी,
1: अच्छा। तो फिर क्या करेंगे? 15 दिन में पानी देंगे।
0: पानी देंगे। फिर उसका मतलब घास फूस की निराई करना है। इससे हमारा सामान्य विधि के वो हिसाब से हमारा इसमें गेहूं दुगना पैदा होगा।
1: अच्छा। बीज भी कम लगा?
0: हम बीज भी कम
1: बीज भी
0: लगा,
1: बहुत कम लगा।
0: और मतलब जैविक विधि से ही इसको तैयार करते हैं।
1: हाँ। तो इसमें जैविक विधि तो फिर खाद बीच में देना पड़ेगा कि बस
0: खाद
1: पहले ही?
0: वर्मी कंपोस्ट वाला खाद डालेंगे।
1: तो ये खाद कब डालते हैं?
0: खाद पाटा चलाने से पहले खाद का छिड़काव कर लेते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: इसके
1: अच्छा
0: बाद गेहूं लगाते हैं।
1: जी मतलब पहले जुताई ठीक ढंग से करके,
0: हाँ
1: और फिर जो है कि उसमें पटा लगा लेंगे भुरभुरा
0: हाँ
1: जब खेती हो
0: हाँ
1: जाएगा, और
0: मतलब
1: फिर उसके
0: जोताई के बाद हम उसमें खाद का छिड़काव करेंगे।
1: जी।
0: इसके बाद पटा चलाएंगे, इसके बाद तब हम उस गेहूं को दो दो बीज लगाना है,
1: दो
0: दस
1: दो
0: इंच
1: बीज
0: की
1: लगाना
0: दूरी
1: है
0: पे।
1: 10 इंच की दूरी पे।
0: जी
1: तो ये लगभग कितने दिन में जमा हो जाता होगा ये सबका? अंकुरित
0: बहुत
1: तो है ही है।
0: अंकुर है भैया, बहुत पहले जल्दी जन्मर्सन होता है
1: हाँ
0: इसका,
1: हाँ हाँ
0: 3 से 4 दिन के दिन में ये गेहूं दिखाई देने लगेगा।
1: तो फिर और आगे निराई गुड़ाई भी कर देंगे,
0: हाँ, निराई गुड़ाई
1: तो
0: करना
1: कितने
0: है
1: दिन में लगभग ये तैयार होने की संभावना हो जाता है?
0: गेहूं का, आपके बीज के हिसाब से है,
1: बीज के हिसाब से। तो
0: जिस तरह से आपका बीज रहेगा।
1: अब चूंकि बाद में चल करके बहुत सारे गेहूसा रोग भी लगते हैं, और तमाम रोग लगने की संभावना ही होती है, तो उस समय फिर क्या देख रेख करना होता है इसमें जो है कि रोगों में?
0: उसमें हमको जैविक दवा का ही छिड़काव करना पड़ेगा।
1: अच्छा, यही जो आप बता रहे थे कि
0: हाँ,
1: मठास्त्र हो गया, निमास्त्र हो
0: निमास्त्र हो
1: गया।
0: गया, मठास्त्र हो गया, इसका
1: हाँ।
0: ही उपयोग, मतलब पूरी तरह से हम जैविक दवा से ही इसको और जैविक खाद से ही
1: जी,
0: उपजाते
1: जिसे
0: हैं।
1: अभी जैविक खाद जैविक दवा की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या लाभ समझ में आता है?
0: देखिए भैया, इससे जो हमारा रासायनिक दवा का हम छिड़काव करते हैं, तो उसमें कुछ अंश रह जाता है बीज में हमारा,
1: अच्छा जी,
0: वो
1: फसल
0: हमारे
1: के अनाज में।
0: फसल के अनाज में, सब्जी में हो गया, वो हमारे शरीर के लिए हमेशा हानिकारक होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो करेंगे तो ये
0: जो
1: अच्छा है।
0: हमारा ये जैविक विधि से हम उगाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हमेशा लाभदायक होता है।
1: और ये खाद की बात आती है, जैसे कि रासायनिक खाद लोग डालता है तो लोग बताते हैं कि साल अगर कुछ खाद डाले 1 किलो तो अगले साल से फिर 1.5 किलो की आवश्यकता पड़ जाती है,
0: डालना पड़ता है।
1: तो क्या ये जैविक खाद में भी ऐसा है क्या?
0: नहीं भैया, इसमें नहीं है। इसमें हमारा जैसे जितना इस वर्ष हम छिड़काव किए उतना से ही अगले वर्ष हमारा पैदा हो जाएगा।
1: अच्छा, मतलब एक दो फसल ऐसी देख लेगा
0: लेकिन

0: इसका
1: रासायनिक में हमेशा इसका मात्रा बढ़ाते जाना है, जिससे हमारी धरती बीमार होते जा रही है।
0: जी जी,
1: जब हमारी धरती माँ ही बीमार है तो हम सब कहाँ से रहेंगे।
0: यानी कि धरती माँ को बीमार होने से बचाना है तो जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें,
1: अपनाना है।
0: हाँ, और जो है कि अच्छा उत्पादन करना है तो श्री विधि का प्रयोग करें।
1: हाँ,
0: और श्री विधि के भी
1: देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, हमेशा हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और धरती तो बढ़ेगा नहीं। इसके वजह से हम मतलब श्री विधि को अपनाते जा रहे हैं, तो इससे हमारा पैदावार बढ़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आमदनी बढ़े।
0: अच्छा उत्पादन करने के लिए, अच्छी आमदनी करने के लिए लागत कम करना पड़ेगा।
1: हाँ,
0: और तब जाकर के आमदनी अधिक की अपेक्षा की जा सकती है, बचत की।
1: तो
0: चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको लगभग जिला जवार के सारे लोग सुन रहे हैं
1: जी,
0: तो चलते चलाते लोगों को क्या कुछ सरखना चाहेंगे जो अंधाधुंध जो है कि ऐसे ही खेती किसानी
1: अंधाधुंध जो रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग गाँव में जा जाकर घर घर बताते हैं कि हम लोग को देखिए दीदी भैया, रासायनिक विधि को धीरे धीरे कम करिए, रासायनिक दवा, रासायनिक खाद, और जो गाय के गोबर हो गया, जैविक खाद हो गया, जैविक दवा हो गया, इसका उपयोग
0: धीरे धीरे
1: उपयोग करें, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हमारा दिन प्रतिदिन हम बीमार होते जा रहे हैं, यही रासायनिक दवा, रासायनिक खाद

0: वो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: देखा कितना बढ़िया हम लोगों के सुनीता देवी बतौलन और भोला भी एकदम फरिया फरिया के पूछलन कि रवि में अच्छा उत्पादन लेवे के का तकनीक बा। और जब हम लोगन के बढ़िया उत्पादन लेवे के बाद सबसे पहले अपन माटी के बचावे के जरूरत बा, और माटी जब बचल रही तो हम लोगन के भी स्वास्थ्य सही रही।
2: बिल्कुल, और जितना जरूरी बा माटी के स्वास्थ्य परीक्षण कराइब, उतना ही जरूरी बा माटी के स्वस्थ रखे खातिर उर्वरक के सही चुनाव। जैसे सही बात कहत रही ना सुनीता जी कि जब हम रासायनिक खाद डाली ला ना तो हर वर्ष ओकर मात्रा बढ़त जाला, काहे कि माटी के जो वास्तविक उर्वरा शक्ति होला वो रासायनिक खाद के कारण छीण हो
1: जाला।
2: तो यही से हम लोगन के जैविक अपनावे के जरूरत बा। बहुत बढ़िया बात बत कही भइल, और इतना अच्छा लगत रहा हमके कि एक बहिन है और कितना खुद भी इतना जागरूक है और जागरूक करावे खातिर लोगन से संपर्क में है, प्रशिक्षित करत है। तो आप लोगन के देखा धन्यवाद दिहल जाई, मगर देखा चुकी खेती बारी के चर्चा होला, उत्पादन फल सब्जी के बात होला, तब मने में एक ठे सवाल उठेला।
1: कैसन सवाल?
2: कि बाजार कैसन चलत बा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखा बाजार के जब बात कह देलू तो हमरे हाथे में पाती लग गई बा दुधी मंडी के, जो उनके थोक बाजार भाव बा।
2: अच्छा, कुंतल में बतावेलन आपन संतोष कुमार कुशवाहा भैया, तब तो पाती पांचो फिर।
1: हाँ, तो देखा आलू जोन बा की 1200 रुपया कुंतल, और बैगन 1200 से 1500, टमाटर 4000 से 4200, और मूली 3000 से 3200, हरियर मरचा बा 3000 से 3500, लौकी 2000 से 2200, नेनुआ 3000 से 3500 कुंतल में बा। और भिंडी देखा 3000 से 3500 बा, करेला 2500 से 3000, कोहड़ा 1500 से 2000, चुकंदर 2500 से 3000, और बंडा 2800 से 3000, और बोड़ा 3000 से 3500, ओकरे संगे देखा सूरन बा 3000 से 3500, और फूल गोभी 5000 से 5500, और पत्ता गोभी 2500

0: अब विलंब काहे हम लोग करी, तो उत्तम कुमार भैया के एक देवी गीत बा, काहे कि नवरात्र के
1: तो
0: महीना
1: चलत
0: चलते
1: बा
0: बा,
1: एकदम सही
0: तो
1: कहला, तो समय से इहो सुनल जाए।
0: हम्म।

0: देखा कितना बढ़िया हम लोगों के उत्तम कुमार भैया के देवी गीत सुने के मिलल, और जब देखा समय पर गीत गौनाई हो जाला ना
1: मन एकदम खुश हो जाला। और देखा नवरातन चलत बा तब एकदम संजय होते जैसे भक्ति भाव जग जाला दिया पूजा के, वही तरह से गीत गौनाई भइल। मगर देखा हम लोगन बैठकी में जो सुन ली जा कि जैविक विधि अपनावे के बा तो जैविक कीटनाशक पर हमके जरूर ध्यान देवे के बा, काहे कि देखा हमार सुनीता बहन भी बतैली कि घर बैठल हम

0: कैसे जैविक कीटनाशक तैयार कर सकीला।
1: कहे ने। और देखा वो हमें कई तरह के बा घर बैठे हम लोग बना सकेला। जैसे देखा अपन गांव में घरे में नीम के पत्ते मिल जाए, नीम कौड़ी मिल जाए, तो उसे हम लोग नीम के तेल अब ले करके अपन जैविक बना सकेला। और जो मट्ठा हो गई, गौमूत्र बा, कई यह तरीका से कई तरह के हम लोग अपन जैविक रसायन बना सकेला। और जैविक रसायन से देखा हम लोगन के कोनो तरह के हानि नहीं होके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हानि के बात भइल ना तो देखा फिर हमके जाए के हर हम लीला तो तनी चलल जाए, बैठ के समेटल जाए, समय से चलल जाई। और फिर ओकरे बाद कुछ घरे जाना था, चूल्हा चौका हमन के करे के बा, फिर लड़कन के दलन के तैयारी करे के बा, तो का कहत हवा।
1: तो चलो चलाओ तो ये कहल चाहे थे कि सब भैया लोगों ने अपन स्वास्थ्य के ध्यान रख करके अपन काम करन। और यह बात के साथ अब अपन
0: बैठ की
1: पंचायती जीवन
0: समेटल
1: बा
0: जाए,
1: पूरा हो गए तो चले के। हाँ
0: कल फिर मुलाकात हुई, भांति भांति के बात हुई, तो चलत चलावत सब पंचन के
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की यह पहली रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म है जय दक्षिणेश्वर कालीमा।

लता मंगेशकर के गाए इस रचना के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक गीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उत्तम कुमार के गाए चंद लोक गीत। आरंभ करते हैं कृष्ण भजन से।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, लोकगीत कार्यक्रम में आज आपको हम सुनवा रहे थे उत्तम कुमार के गाये लोकगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
2: तुम्हारे इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर रखना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
0: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
0: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बारिश की आपदा से प्रभावित 9,18,000 किसानों के खातों में पहुंची 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार 8 से 10 दिन के भीतर दे रही है मुआवजा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत जागरूकता रैली को किया रवाना, कई जिलों में कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा का दिया गया संदेश। 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET, 60 जनपदों में 2 पालियों में होगा इम्तहान। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा, प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित प्रदेश के 9,18,091 किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए कृषि निवेश अनुदान हस्तांतरित किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने महज 8 से 10 दिन में किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया है। इस वर्ष बरसात के दौरान आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से कटान रोकने के लिए कार्य तत्काल शुरू करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अतिवृष्टि हुई है वहां 15 अक्टूबर से धान, ज्वार, बाजरा और मक्का के क्रय केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन क्षति पर आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
7: अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रदेश ने पिछले एक सप्ताह पूर्व काफी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी जगह जन और पशु की भी हानि हुई है। आज डबल इंजन की सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को उनकी फसल क्षति, मकान क्षति, पशुधन की क्षति का ये आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति के छठे चरण के अंतर्गत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में महोबा, इटावा, श्रावस्ती, शामली में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता का संदेश देने के लिए महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। वहीं फतेहपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज 6 के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को जिलाधिकारी निधि गुप्तावत्स ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: इस रैली में काफी संख्या में पुलिसकर्मी और विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: तो इस मार्च के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस प्रकार महिलाओं में शक्ति होती है, हर एक बच्ची में भी एक शक्ति होती है, और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उसका भी लगातार अब प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, अवेयरनेस चलाई जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में कहा कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रूपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में बेहतर कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।
2: शिक्षकों के हित के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए, हित के लिए जो अच्छा होगा, सरकार उस प्रकार का कदम उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाएगी। हम आपके साथ में हैं, आपके हितों का संरक्षण करेंगे। जैसे हमने एक मुश्त पैसा दिया।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 की परीक्षा तिथि और आवंटित परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पेट 2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में संपन्न होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा जनपद की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि परीक्षा शहर की सूचना एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र अलग से वेबसाइट पर यथासमय जारी किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का यह प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ते देश के कदम की।
4: 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को स्वदेशी स्तर पर विकसित करना था, जिसमें निर्माण, पैकेजिंग, डिजाइन शामिल थे। इसके संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज की जरूरत मानते हुए कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है।
5: हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं।
4: गौतम बुद्ध नगर की उद्यमी खुशबू सिंह ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को बल मिला है।
6: स्थानीय स्तर पर चिप्स और उपकरणों का निर्माण होने से उद्यमी को महंगे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे सप्लाई चेन और भी तेज बनेगी।
4: सेमीकॉन इंडिया के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन के लिए काशी और आसपास के जिलों से भक्त पहुंच रहे हैं। जौनपुर स्थित शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बलरामपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन दर्शन पूजन के लिए लगी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं का आना यहां जारी है। वहीं सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के 15 दिवसीय शारदीय नवरात्र मेले का शुभारंभ हो चुका है। यहां भक्तों की लंबी कतारें और माता के जयकारों से पूरा मंदिर क्षेत्र गूंज रहा है। एक रिपोर्ट।
7: आज नवरात्र के दूसरे दिन सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी में भारी भीड़ उमड़ी। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मेले में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सीसीटीवी कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी

0: यानी की जा रही है। विजयन सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर।
1: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा ने खरीदारों से निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही धनराशि जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट का विवरण यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल से अवश्य सत्यापित कर लें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर घर खरीदार से परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए कहता है तो खरीदार इसकी सूचना यूपी रेरा को दें। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बदायूं जिले में बिसौली थाना क्षेत्र में आज एक स्कूल की बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायल को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेरठ में सरधना के दबथुआ क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश की आपदा से प्रभावित 9,18,000 किसानों के खातों में पहुंची 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार 8 से 10 दिन के भीतर दे रही है मुआवजा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मिशन शक्ति के 6वें चरण के तहत जागरूकता रैली को किया रवाना। कई जिलों में कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा का दिया गया संदेश। 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET। 60 जनपदों में 2 पालियों में होगा इम्तहान। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
4: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो। क्या
6: RBI कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। मैं और मेरी तरह सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत, आवाज चित्रा सिंह की है।

सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और हेमलता की आवाज में नदिया के पार फिल्म की ये रचना।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: सबरस कार्यक्रम का यह आखिरी गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म है मैना।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली रचना आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। ये रचना अलका याग्निक की आवाज में।

श्रोताओं, अलका याग्निक की गाई इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम एक बार फिर आपको हम सुनवाएंगे रात्रि 8:30 से।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में देश प्रेमी फिल्म से।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सूर्या फिल्म के इस गाने को। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है जख्मी।

औषधों कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। औषधों कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है मोहम्मद अजीज का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने माँ फिल्म से लिया है। और अब कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है माँ फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज ने। मोहम्मद अजीज ने इसे पसंद किया है और इसके लिए हमें मेल किया है। इसको पसंद करते हुए हमें मेल किया है सिंगरौली मध्य प्रदेश से शैलेश, जानवी, ज्योतिका, जयप्रकाश, आयुष और इनके मित्रगण के साथ घर के सभी सदस्यों ने। तो चलिए फिर आपकी पसंद को पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं माँ फिल्म का ये गीत।

जख्मी फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी हुबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की यह पहली रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y।

0: ऑफ SBI, आपका साइबर रक्षक।
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं बाली ब्रह्म भट्ट की आवाज में ये रचना।

बाली ब्रह्म भट्ट के गाये इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

0: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष

0: विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
1: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
0: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
2: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का

0: website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है इंतकाम।

पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। और अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में अन्नदाता फिल्म के इस गाने को।

अन्नदाता फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसर गीत अब समाप्त होता है। आपसे बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा एफएम 102.7 पर। साथ ही आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

तो ये था कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म थी एक दूजे के लिए। और अब सुनते हैं नागिन फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत ही प्यारा संगीत। ये फिल्म है 1989 की मैंने प्यार किया।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। श्रोताओं, हर गीत अपने साथ कोई ना कोई एहसास लेकर जरूर आता है। कभी कोई गीत मुस्कान दे जाता है, तो कभी कोई गीत बीते हुए दिनों की याद दिला जाता है, तो कोई अपनों को और करीब लेके आता है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को आपकी ईमेल से मिली फरमाइशों के साथ लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। और श्रोताओं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का हिस्सा बने, तो अपना नाम अपना पता हमें ईमेल करिए। ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत।

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे थे बेटा फिल्म से, जिसके लिए हमें मेल किया था मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और इनके घर के सभी सदस्यों ने। और साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था उत्तर प्रदेश श्रोता संघ मेरठ से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय डिंगिया, अनिल जैन, दिव्यांशु यादव और दर्शन भाई ने भी। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो आई है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत से। भेजने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा जी, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मोसा और राजकुमार बुढ़ाना। इसके अलावा खंडवा के सुदामा नगर से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है इस कार्यक्रम में। आप सबकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं मर्द फिल्म की ये रचना, जिसे गाया है शब्बीर कुमार ने। और साथ ही इस गीत के लिए हमें मेल प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहाकर, निर्मला, विशाल, सोपान और नारायण इंगले का। तो चलिए फिर आप सबकी पसंद पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं मर्द फिल्म की ये भक्ति रचना। कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आप सुन रहे हैं आशीष वर्मा के साथ।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में अगला गीत सुनने से पहले आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के लिए हमारा पता है akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं और जिस गीत के लिए आप हमें मेल करते हैं उन गीतों को हम सोमवार और शुक्रवार को प्रसारित अपनी म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अब सुनवा रहे हैं दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से आई इस फरमाइश को, जिसके लिए हमें मेल किया है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इनके घर के सभी सदस्यों ने। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में स्वर्ग से सुंदर फिल्म की ये रचना।

और श्रोताओं आप कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आई इस फरमाइश को, जिसके लिए हमें मेल किया है शैलेश, जानवी, ज्योतिका, जयप्रकाश, आयुष, इनके मित्रगण और इनके घर परिवार के सभी सदस्यगण। आप चाहते हैं कि आपको सुनवाया जाए मोहम्मद अजीज की आवाज में माँ फिल्म का ये गाना, तो चलिए फिर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पसंद वाला ये गीत अपने रेडियो सेट पर जरूर सुन रहे होंगे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आशीष वर्मा के साथ।

म्यूजिक गर्ल डे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से, जिसके लिए आपने ट्यून किया है FM 102.7। साथ ही आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। तो चलिए अब आपको जोड़ते हैं ग्राम पीपरलोड सरगवा छत्तीसगढ़ से आए इस मेल के माध्यम से, जिसे हमें लिख भेजा है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। आप सबकी पसंद है बड़े घर की बेटी फिल्म के गाने को सुनने की। आवाज मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की है।

शुभम म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में इस गीत को सुनने के लिए जिला मुरादाबाद ग्राम धोलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने भी हमें मेल किया है।

और अब आपको लिए चलते हैं हथियाड़ा के हिसार से गांव जेवरा की ओर, जहां से हमें वीरेंद्र, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज ने फरमाइश की है। आप सभी सुनना चाहते हैं खुदगर्ज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों ये गीत सोशल मीडिया पे बहुत हिट हुआ था शादी में हुए डांस के माध्यम से। वैसे इस गीत का पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। तो फिर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं खुदगर्ज फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में ये अगला संदेश आया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज स्थित ब्रह्मनगर गली नंबर 4 से। हमारे श्रोता शेषनाथ गौड़ ने सुजय शुभांकर सनी और शिबू के साथ फिल्म अकेले हम अकेले तुम के इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तो चलिए फिर दोस्ती और अपनों के नाम से सजी इस फरमाइश को स्वीकार करते हैं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद वाला ये गीत।

संस्कृत के लिए हमें आपने भी मेल किया है। आप हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। साथ ही यवतमाल विदर्भ से संतोष और विनोद खटसे ने भी।

और श्रोताओं, अब म्यूजिक गले कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है संघर्ष फिल्म का गीत। इसे सुनने के लिए हमें मेल किया है लोरमी के मन की गांव से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे ने। साथ ही इस गीत के लिए मेल के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश के गांव लसुडिया पाता नरसिंहगढ़ से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और इनके ढेर सारे दोस्त भी। तो चलिए फिर आप सबकी पसंद पर म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम को और भी खुशनुमा बनाते हैं, आपको सुनवाते हैं संघर्ष फिल्म का ये गीत।

तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, जिसे आप सुन रहे थे आशीष वर्मा के साथ। और श्रोताओ, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनिए। हमें ईमेल करिए अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए। मेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए आकाशवाणी ओबरा से। नमस्कार।

आकाशवाणी बमरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब सुबह थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में

0: महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।